अपना जान करो प्रत पारा तुम साहिब मैं किंकर तारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संगारो प्रथम तारो भगवत को ध्याना बाहर करो कब ताबे दनाना कृष्ण जथा मत चरितरो चारो चूक हो कब लो सुधारो कब बाच दो हरा जो निज प्रभ मो सो कह हूं जग माहे जो तेह प्रभ को त्याय अंत सुर्ग को जाहे दो हरा हर हर जन दो एक है बिब विचार कछ नाहे जल तुभ तरंग जाओ जले बिखा समाहे दो हरा जब आयस प्रभ को पहो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूं कथ सुनाए कब बाच दो हरा ठाड पहो मैं जोर कर बचन का सिर न्याय पंथ चला तब जगत में जाओ तुम करो सहाय दो हरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ है संत अंत लहेंगे मुक्त बल पावे गे भगवंत दो हरा काल पुरख की देह मोह कोटक बिसर महेश कोट इंद्र ब्रह्मा के तेह राव सास करोर जलेस दो हरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत स्वर्ग बास रगबर करा सगरी पुरी समेत चापई जो है कथा सुने और गावै दुख पाप तेह निकट न आवै विष्णु भगत किए फल होई आद ब्याद छवै सकै न कोई संबत सत्रह सास पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन तै प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लहो लेहो सुधारा दो हरा नेत्र तोंके चरण तार स्तर तीर तरंग श्री भगवत पूरा

एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब भेद कहे हम एक न जान्यो श्री आसपान कृपा तुमरी कर मैं न कहे सब तोहे।

दर्शन प्यासे दिन सरात चितवा आनंद ननीत खोल कपट गौर मेलिया नानक हर संग मीत धर्मद ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करा को मेरी दर्शन दीजा खोल के वार सो कहो टाला गौर से तहन सुसाज सुब दर्शन पर से गुरु का जन्म मरण दुख जाय हुआ शिव तख समी नूर अरसो कुरसों चटी तुद डिठे सचे पात सा मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पात साहो सिर सा दासाहो

सच्ची कंदवल नस कमाई चोजी प्रीतम प्यारे वो प्यारी पुरिया लोकी कर दे कंद दे अज दिदारे वो प्यारी पुरिया लोकी कर दे

योग गुरु की साजी निवादी गुरु का खास रूप साध संगत जी दीन दुनिया दे रहबर चवर शतर तख्त दे मालक धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अपार कृपा मेहर अहमत दा सदका सतगुरां दे हजूर सुंदर सुंदर दीवान सजे हन सजे दीवाना दे अंदर आप संगतां रब्बी बाणी तुरकी बाणी अकाली बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ बोध सरवण कर रहे हो। सतगुरु जी ने महान तरस कीता है हुण तक 1007 अंग सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जीआं दी पावन बाणी आपां पढ़ी सुनी है। 1007 अंग तों पहला शब्द जिहड़ा प्रारंभ हो रहा है राग मारू दे विच्चों पंजवें पातशाह महाराज जी कृपा कर रहे हन। मारू महला पंजवा ताज आप बिन सीताप रेण साधु थीओ तिसह प्राप्त नाम तेरा कार कृपा जिस दीओ। इथों पावन बाणी प्रारंभ हो रही है। श्रद्धा प्रेम भावना अदब सत्कार सहित मन चित बिरती नूं एकाग्र करके सरवण करिए जी।

अड जिवें ज्ञानी जी ने उचारण कीता गनका हो इकट्ठा नहीं पढ़ना ते अजामल दा पिछे भी बेनतियां कीतियां हन इसे तरह ही अजामल पाठ करना गनका हो वखरा जा बोल के

0: सांप थोड़ा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
3: यार उधर अंदर ही पर यार उन्हें पटारी जो पैदा बंद करना लगी होएगा। हाँ जी।
4: पूर्व बल्ले के

0: अंतर गर्भ उर्ध लेव लागी। सो प्रभु सारे दात करे संसार पवजल क्यों तरे गुरमुख नाम निरंजन पाइए अफरियो पार अफार टरे
1: अफरियो आफ बोल के रियो सारा पाठ साध संगत जी है कठाई है ऐड़े नू अगेतर नहीं लाउणा अफरियो जिवें उचारण कीता है पोला पाठ करना कसणा नहीं अफरियो पार अफार टरे।

मेंडा पाठ ज्यादातर उच्चारण किया जाता है, मेंडा नहीं कहना, मैडा ही उच्चारण करना, बिंदी तो रहत। मैडा मन रत्ता आपनड़े पेर नाल, आपन बोल घेड़े, पाठ इकट्ठा ही है।

का सारी जग चतुर सियाणा भरम भुलाणा नाओ पंडित पढ़ गावारी नाओ विसार है वेद संभाल है बिख भूले लेखारी कल्लर खेती तरवर कंठे बागा पहर है कज्जल झरै एओ संसार तिसै की कोठी जो पैसै सो गर्भ जरै रैयत राजे कहा सबाए दोह अंतर सो जासी कहत नानक गुर सच्चे की पौड़ी रहसी अलख निवासी मारू महला तीजा घर पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सत गुर प्रसाद जिसनो प्रेम मन वसाए साचे शब्द सहज सुभाए।

आराधे जम कंकर किछ ना कही मोख मुगत द्वार जाके संत रिदा पंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखण हार दुख दर्द कलेश बिनसे जिस बसे मन माहे मृत नरक अस्थान बिखड़े बिख ना पोहे ताहे रिद्ध सिद्ध नव निध जाके अमृता परवाह आदि अंते मध पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधक देव मोन जन वेद करह उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचह नहीं अंत पारावार अनिक पराछत मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान इसनान बल बुद्ध सुध प्राण सर्बस संत जना की रा संत ना की रास बिसर नाही निमख मनते नानक की अरदास मारू महला पंजवा शस्त्र

पंच चोर चंचल चित चाल है, पार घर जो है घर नहीं पाल है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द पत जाई हे, गुरते बूझे त्रिभवन सूझे, मनसा मार मन स्यो लूझे, जो तुध सेव है से तुध ही जे हे, निर्भव बाल सखाई हे, आपे सुर्ग मच पया।

0: मेरा चित ना चलत, नहीं चल रहा। पता है चंचल दे अर्थ की ने, चल चल चल चल हर वक्त ही चल रहा है। तन बैठा है ता भी मन चलता ही रहता है, चंचल है। चल चल चलता चलता चलता है, रुकता ही नहीं, कदे टिकता ही नहीं। स्वामी रामानंदा बसंत राग का है शब्द, कहते ने मन मेरा पिंगला हो गया, कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चलत मन भयो अंग, एक दिवस मन भई उमंग, गस चंदन चोआ बहुत सुगंध, पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरु मन ही माए। टिके होया मन सब कुछ समझ लेंदा है, भटकना जद मिट जाए। दो गल्लां धार्मिक जगत दे बिल्कुल गलत कहियां जांदियां ने, भई मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, गलत। इंज कहना चाहिदा गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले कित्थों शुद्ध कर लोगे, किवें कर लोगे? फिर दूजी गल करदे ने, मन नूं एकागर करके बाणी पढ़ो। यकीन जानो इन्हां नूं मन दी समझ नहीं। इंज कहना चाहिदा बाणी जपो ताकि मन एकागर होवे। पहले कित्थों एकागर हो जाएगा? ये मन नूं एकागर करके बाणी पढ़ो, बिल्कुल गलत। इन्हां लोकां नूं मन दी समझ ही नहीं है। बाणी जपो ताकि मन एकागर होवे, मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ। हद हो गई। इंज कहना चाहिदा गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किवें शुद्ध हो जाएगा? बिना सत्संग तो किवें जो है शुद्ध हो जाएगा? बिन भागा सत्संग न लब्भे, बिन संगत मैल भरी जे जी, इत मैला हो जाएगा उल्टा। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा। कबीर कहिंदे ने, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण, ऐसा बाणी दा बाण लगया पैरां तो पिंगला हो गया, भटकना मिट गई। इनू एक उर्दू दे माया नाज शायर ने इंज कह लो टीका ही कीता होगा, जरूर इन्हां भगतां दे ख्याल उसने सुने होने ने, या चलो उसका अपना निजी अनुभव होवे। मिर्जा गालिब कहिंदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, कहिंदा है जिहड़ा मेरा पैर टूट गया है ना, इस टूटे पैर दा मेरे ते बड़ा एहसान है, मैं इसका एहसान मन रहा जो मेरा पैर टूट गया। हद हो गई, पैर टूट गया ते टूटे पैर दा एहसान शुकराना पिया करदा। अगे दसदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता, हुण मैं तेरे दर जोगा रह गया, किधरे जान जोगा रहा ही नहीं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता, मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहिंदा गल खुदा तेरी समझ च आ गई है, पर की करम, मैं बोल नहीं सकता, गूंगा समझा नहीं सकता। बिसम बिसम बिसमे ही भई है लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आइए ज्यो चाक गूंगा मुस्कारे, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। एक होर गल भी बड़ी कीमती करता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, हर दिल विच रब्बी प्यार नहीं पैदा होता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये ओ गीत है, इनू हर सांस ते नहीं गाया जा सकता। ये ओ राग है, ये ओ गीत है, जिदे वास्ते विशेष वाजा चाहिदा, विशेष साज चाहिदा है। भाव हर दिल दे चे नगमा नहीं गूंजदा, पहले दिल दी बणतर बनानी पैंदी है, सत्संग कर करके कर करके कर करके। तो मैं अर्ज करा, उदास होण दे निराश होण दे तीन कारण ने। पहला, बड़ा गहरा स्रोता होवे ते गुरु दा शब्द चोट कर जाए, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। दूसरा, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਲਵੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਮਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਦਿਲ ਚੋਟ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੁਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੇਖੀ, ਹਿਰਦਾ ਚੋਟ ਖਾ ਗਿਆ। ਬੁੱਢੇ ਮਨੁੱਖ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਢਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੜਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਦਿਲ ਚੋਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਕਲ ਇਤਨੀ ਬਾਰੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵੇਦਨਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਸੰਵੇਦਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਦ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਅਕਲ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਜਾਏ, ਤੋ ਅਕਲ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨਾੜ ਸੀ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਰੇਆਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਦ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲ ਚੋਟ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਰੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ। ਤੀਸਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਅਕਲਮੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਹੀ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ। ਤੀਸਰਾ, ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਲ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਲ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ, ਸੰਸਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਜੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਮਨ ਅਜਾਨਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਅਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਬਾਰੀਕ ਬੀਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦਾ, ਖੇਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਜੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੇਲ। ਅਕਲ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਛੇਤੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਲਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਜ਼ੀਚਾ ਹੈ ਇਤਫਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਿਫਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਫਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬਹੁ ਵਚਨ। ਬਾਜ਼ੀਚਾ ਹੈ ਇਤਫਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ। ਬਾਜ਼ੀਚਾ ਹੈ ਇਤਫਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਹੋਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬੋ ਰੋਜ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। सब कुछ रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन चल रही है, पुनरुक्ति चल रही है। एक खेल है औरंग सुलेमा मेरे नजदीक, तख्ते सुलेमा ने सिंघासन जिदे लई दुनिया कितने पापड़ बेल दी है। कोई पिंड दा चौधरी बनना चाहता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना, कितने पापड़ लोकी बेल दें। कहिंदे बच्चियां दा तमाशा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंग, औरंग तख्त नूं कहिंदे ने, वड्डा तख्त उहनूं औरंग कहिंदे ने, ऐ छोटा तख्त इहनूं मसनद कहिंदे ने, मसनद। गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 प्रचारकां नूं इह मसनद बख्शिश कीती सी, मंजियां बख्शिश कीतियां सन। पंजाबी च असीं उहनां नूं मसंद कहिंदे आ, फारसी दा लफ्ज़ है शुद्ध मसनद, इह मसनद है जिस ते धन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है। इनू फारसी दे च औरंग कहिंदे ने, वड्डा तख्त जिस ते बादशाह बैठे औरंग, छोटा तख्त जिस ते अहलकार बैठन मसनद। शाहजहां दा लड़का मयोदीन प्यो नूं जेल दे च पा के ते तीन भरावां नूं मार के जिस दिन सिंघासन ते बैठा, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। नाम वैसे उसका मयुनदीन से, शायद आपको पता होवे आद काल तो कवि लोग, गुणी लोग, दार्शनिक, फिलोसफर, राजे महाराजे बादशाह अपना तखल्लुस रखते रहे, रखते रहे। तखल्लुस का मतलब है खास नाम, हिंदी च कहते हैं उपनाम, कोई उपमा है गुणात्मक नाम, कोई गुण ने तो गुणात्मक नाम रखे है, तखल्लुस रखे है। जैसे हुमायूं का लड़का जलालुद्दीन जिस दिन सिंघासन पर बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया अकबर। अकबर का मतलब है सब तो वड्डा, ताई मुसलमान कहते ने अल्लाहू अकबर, अल्लाह ही सब तो वड्डा है। पर जलालुद्दीन ने अपना लकब रखिया जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन ही सब तो वड्डा है। एक अकबर उसका तखल्लुस है। अकबर का लड़का शाहजादा सलीम जो जोधां बाई दी कुख तो पैदा हुई सी, ते जोधां बाई राजा मान सिंह वालिए जयपुर दी भैण सी, ये राजपूत अपने धी भैणां दे डोले मुगलां नूं देण लग पए सन, जिहदी अगां चल के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मुखालफत कीती। राजा मान सिंह दी भैण जोधां बाई ते बेगम सी अकबर दे, इहदी कुख तो पैदा होया शाहजादा सलीम। वड्डा होके जिस दिन सिंघासन ते बैठा है, इन्हें अपना तखल्लुस रखिया जहांगीर। जहांगीर का मतलब है सारा जहान मेरी पकड़ दे च, मेरी मुट्ठी च, जहांगीर। इसने गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद किया, कल गुरुपुरब तुसीं मनाना। इसने ही तरह तरह के तसैये ताए, इसने ही बहुत वड्डा जुलम किया। दोगला सी, जोधां बाई का लड़का सी, अकबर का लड़का सी, तखल्लुस रखिया जहांगीर। जहांगीर का लड़का शाहजादा खुर्रम वक्त पाके जब सिंघासन ते बैठा है, तख्त ते बैठा है, फिर इन्हें अपना तखल्लुस रखिया शाहे जहां। शाहजहां सारी दुनिया का बादशाह, निरा हिंदुस्तान का नहीं। तो शाहजहां का लड़का मयुनदीन जिस दिन सिंघासन ते बैठा है, इन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। औरंग कहते ने तख्त नो, वड्डा तख्त, जेब कहते ने शिंगार नो। औरंगजेब तख्त दा शिंगार, तख्त दी शोभा, तख्त दी मान मर्यादा, ये उसने अपना तखल्लुस रखिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जरूरत जफरनामे दे राही लिखते ने औरंगजेब नूं, ना जेबन तो रा नाम औरंगजेब, के औरंगजेब न बायद फरेब, ऐ मयुनदीन ए नाम तेनू शोभा नहीं देता, तू औरंगजेब नहीं है। तेरे जैसा बंदा जब तख्त ते बैठता है, तख्त बदनाम हो जाता है, तख्त भ्रष्ट हो जाता है, तख्त मैला हो जाता है, तू औरंगजेब नहीं है। जरूरत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तुरा तर्क ताजी ब मकरो रया मरा चारा साजी बसिद को सफा न जेबत तो रा नाम औरंगजेब के औरंगजेब न बायद फरेब महा फरेबी हैं तो झूठा है चराग है हमो मर्द बायद शबद सुखनवर न सिख में दिगर दर दहाने दिगर तेरी जबान ते कुछ और है तेरे दिल दे कुछ और है तू ते मनुख ही नहीं है तू ते इंसान ही नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी ये जुरत उसनु जो है ऐसा आखे औरंग वड्डा तख्त छोटा उनु मसनद कहते हैं पंजाबी शब्द बन गया मसन जिन्होंने गुरु अमरदास जी महाराज ने मसनद बख्शी सी मंजी बख्शी सी तख्त बख्शिया सी इन्हों की पूजा प्रतिष्ठा इतनी होई संगत ने मान सम्मान इतना दिता इन्हों को हजम ना होया इन्होंने खुद गुरु होने का नारा लाया और भ्रष्ट हो गए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं अगां चल के ये मसंद प्रथा खत्म करनी पई हुण मसंद दा ते मतलब है जिन्हों तख्त मिले है लेकिन सिख जगत दे च अज गाल बन गई किसे नूं गाल कढ़नी होवे ते कह दिता जांदा है मसंद है मेरा ही मसंद है लेकिन मसंद दा मतलब है छोटा तख्त जिथे बैठे हैं ये छोटा तख्त गुरु अमरदास जी महाराज ने तख्त प्रचारकां दे लई बनवाए सन बे संगत उची थां ते बैठ के गुरबाणी की व्याख्या करन गुरबाणी सुनान ताकि संगतां नूं दिखाई देन ते संग नूं ए देख सकन संबोधन कर सकन ते विचार दा ज्ञान दा गुरबाणी दा सन्मान होवे सत्कार होवे ये गुरु अमरदास जी महाराज ने प्रथा जो है चलाई सी। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा गालिब कहिंदा एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नजदीक ये औरंग ये बादशाह दा तख्त बच्चियां दा तमाशा है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नजदीक एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे हजरत ईसा दे मौजजे कथावां ने कि हजरत ईसा जिस बीमार दे सिर ते हथ रख देंदे सन वो तंदुरुस्त हो जांदा सी। इतिहास है अंधे दे सिर ते हथ रखिया उनू अखां मिल गईयां और ये भी इतिहास है मुर्दे दे सिर ते हथ रखिया जिंदा हो गया गालिब चोट करदा है मुर्दे दे सिर ते हथ रखिया जिंदा हो गया तो क्या वो फिर नहीं मरिया जे फिर मर गया तो हजरत ईसा भी बच्चियां दे तमाशे करदा रहिंदा मैं इहदे नाल भी सहमत नहीं कुछ भी नहीं रिधियां सिधियां भी कुछ नहीं सिद्ध होवां सिद्ध लाई रिद आखां आओ गुपत प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे ना। इतनी वड्डी अकल है कि रिद्धि सिद्धि तो भी प्रभावित नहीं रिधियां सिद्धियां जिन्हां कोल कुछ भी नहीं ना पीर साई कोल ना सैयद कोल ना पंडित महाराज कोल सिख धक्के पै खांदे नूं उहनां कोल ये पंडित महाराज ये पीर साई ये सैयद साहब दो दिन ही साडे मसले हल कर देणगे उंज गुरुद्वारे आणगे कथा कीर्तन सुणनगे मथा टेकणगे गुरु ग्रंथ साहब जी नूं उंज धागे तवीज़ां दे चक्करां च पए ने तमाम पंजाबी दे अखबार भरे पए ने सारे ये इंग्लिश दे अखबारां च भी नहीं है ये उर्दू दे अखबारां च भी नहीं है तीन अखबार उर्दू दे इंग्लैंड दे च निकलदे ने जंग निकलदा नेशन निकलदा है और सियासत निकलदा मैं तिना च नहीं देखिया ना पीर साई देखिया ना सैयद साहब देखिया ना पंडित महाराज देखिया सब पंजाबी दे अखबारां ते छाए ने क्यों सब सिख जांदे ने सब सिख जांदे गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकणा ते पखंड है जांदे उहनां कोल ने। मैं गुरु नानक देव जी दे दो बोल थोड़े सामने रखदे हां ते फिर अगे चलां ते समाप्ति करां समा हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल हमेशा चेते रखना भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किच हाथ है ए मेरे भरा भाई करके संबोधन कर मता किधरे तुसी समझो किसे होर दे हाथ च भी कोई शक्ति है भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किच हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर के वस है लाग सके ना बिन हर के लाया। कुछ भी हरि तो बिना प्राप्त नहीं आंदा, ना वर ना शराब ना सुख ना दुख, जो कुछ भी आंदा है कर्मा अनुसार सब परमात्मा तो आंदा है, किसे तो कुछ नहीं आंदा, सब झूठ है, सब पखंड है। पर मैं एक दफा अर्ज कर दिया, एक तंदुरुस्त बंदे नु भी पांच चार डॉक्टर कह दें तेनू ये रोग है तेनू एक रोग है, उदा मन ते पकड़ लेगा। ये धागे तवीज जादू टोने करने वाले पहले कहते ने तेनू कुछ है, आ गल है तेरे नाले घटना घटनी है, फिर कहेंगे आपां दूर करांगे। धंधा है, और जिन्ने चिर तक मनुख वहम तो वाद दे चक्कर च पिया होया है, समझ ज्यादा नहीं है, कोई ना चक्करा च पाएगा। गालिब कहता है ए ईसा, ये जो तू अंधे नु अखां दे दितियां, बीमार नु तंदुरुस्त कर दिता, मुर्दे नु जिंदा कर दिता, मैं तेरी इस सिद्धि तो भी प्रभावित नहीं। ए भी बच्चियां दा तमाशा है, कुछ भी नहीं है। जिसनु तू जिंदा कीता फिर नहीं मरिया, ते जे फिर मर गया ते बच्चियां दे तमाशे तू भी करदा रहा, एवें खेडां खेडदा रहा बच्चियां दे खिडौणियां दे नाल, सिद्धि सिद्धि खिडौणा। अकल महान होवे मनुख इन्हां चीजां तो प्रभावित नहीं आउंदा, अकल चोट कर जाती है, मनुख सब कुछ तो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, या फिर संसार चोट कर जाए, बहुत वड्डी चोट कर जाए। बड़ा धनाढ़ सी दिवालिया हो गए, बड़ा समृद्ध सी बड़ा कमजोर हो गए, बड़ी मान प्रतिष्ठा सी बड़ी बेइज्जती हो गई, सरेआम पग ले गई। चोट खा के मनुख निराश हो सकता है, उदास हो सकता है। हुण ध्यान नाल सुनना, समाप्ति करा। निराश मनुख उदास मनुख तीन तरह का फैसला कर सकता है, उदास ते निराश भी तीन कारणा करके होवेगा, शब्द चोट कर जाए, अपनी अकल चोट कर जाए, या संसार तो कोई चोट खा जाए। चोट खादा होया मनुख निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा, निराश ते उदास फिर तीन तरह का फैसला करेगा। इनू अध्यात्मी पुरुष इंज कहते ने, आत्म क्रांति, आत्म हत्या, आत्म विस्मृति। खुद नू बदलना, खुद नू खत्म करना, खुद नू भुलाना, इन्हां तिन्नां च एक काम जरूर करेगा। आत्म क्रांति, शब्द तो जिसने चोट खा दी है, आत्म क्रांति खुद नू बदलेगा, कहेगा ए गुरु अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा, हुण तेरे ढंग नाल जीवांगा, अज तक मैं अपने ढंग नाल खांदा पींदा रहा, हुण जो कुछ तू कहिंदा मैं उस तरीके नाल चला, हुण मैं अपना रहन सहन अपनी तर्जे जिंदगी ए गुरु तेरे मुताबिक करांगा जो तू कहिंदा है। इहनू कहिंदे ने आत्म क्रांति, खुद नूं बदलना। आत्म हत्या सुसाइड करना, खुद नूं खत्म करना। निराश हो गया बिल्कुल, उदास हो गया, हो सकता है सुसाइड कर लवे। सारी दुनिया च खुदकशी मौजूद है, इस देश च सब तो ज्यादा है। यह भी मैं अर्ज कर दिया, आंकड़े जिहड़े मैं पढ़े ने दिनवान, एक मैगजीन है भारत विच निकलदी मंथली, उहदे च आंकड़े पढ़ के मैं दंग रह गया। सब तो शक्ति संपन्न देश अमेरिका, पर बाकी मुल्कां दे हिसाब नाल सब तो ज्यादा सुसाइड करने वाले लोग इत्थे ने, खुदकशी इत्थे करदे ने, और सब तो ज्यादा पागल भी इत्थे। गुस्ताखी माफ, क्षमा दी याचना। आत्म क्रांति करेगा या आत्म हत्या करेगा या आत्म विस्मृति करेगा, खुद नूं भुलाने की कोशिश करेगा, दिन रात शराब के नशे ही रहेगा, ड्रग्स खाएगा, अपने आप नूं भुलाएगा, चेते कुछ भी ना आवे। क्यों चेते आएगा? तो निराश है, उदास है, उदासी च किस तरह रवे? सब कुछ तो निराश है, किस तरह रवे? निराश होया मनुख, उदास होया मनुख, या तो आत्म क्रांति करेगा खुद नूं बदलेगा, या आत्म हत्या करेगा खुद नूं खत्म करेगा, या आत्म विस्मृति करेगा खुद नूं भुलाएगा। शब्द तो जिसनों चोट लगी है सत्संग दे च, ये आत्म हत्या नहीं करेगा, ये आत्म विस्मृति भी नहीं करेगा, ये आत्म क्रांति करेगा। ऐ गुरु अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा, हुण मैं तेरे ढंग नाल जीवांगा। अज तक जिसने इस तरह का फैसला नहीं किया, शब्द ने अजे चोट नहीं की थी उसने, ये भी मैच करते हैं। ਉਦਾਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਤਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਤਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਤਮ ਵਿਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ, ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅਜੇ ਨਾ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਇਆ ਕਰੋ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3: ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੀਅਲਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਹਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ, ਜੋ ਆਪਣੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਟਾਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਰੀਅਲਟਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
2: ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।
3: ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਨੂੰ
2: 604-351-5111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 604-351-5111 ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।

तेरी कबर ते रात नू दीवा जलाना होवे, तेरी कबर ते बैठे मजौर आए गए यात्री कोलों जायरीन कोलों पैसे मंगदे ने, तां तेरी कबर ते रात नू दीवा जलदा है, पर जिन्हों तू चांदनी चौंक दे शहीद कीता उत्थे माया दे दरिया पे चलदे ने। जितनू चांदनी चौंक दे शहीद कीता उत्थे हजारा मुसाफर रोज लंगर छक देना, सैकड़े मुसाफर रोज रात बसर कर देना। इस सब कुछ देख के फिर यही पंक्ति कहनी पैंदी है, कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही, वक्ती तौर ते भावें झूठ दी जित होंदी है। इस तो आम कच्चे मनुख डोल जांदे ने, पर आखिर जित सच दी होंदी है। कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही। हुण मैं इतना लफ्ज वक्ती तौर ते दोहरा दें, वक्ती तौर ते सता सिंघासन ते बैठती है, सत तत्ती तवी ते अंदर कच्चे हिरदे डोल जांदे ने, पर अंजाम ऐसा होंदा है आखिर विच सच सिंघासन ते आउंदा है, और जिहड़ी सता है उते मलिया मेट हो जांदी है, कुछ भी नहीं। कूड़ ने कुट्टे नानका ओड़क सच रहे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा उपदेश संदेश अज भी सारी दुनिया विच अलापिया जा रहा, गाया जा रहा, समझा जा रहा, समझाया जा रहा। दस तरीक नूं दास ने ऐ मजमून आरंभ कीता से, सो दर कहा सो घर कहा जित बह सर्व समार। घर ते दर दोहां दा जिक्र कीता है। घर विच आण वास्ते पहले दर ते आना पैंदा है, ते दर घर तो अलग नहीं आउंदा। जिस दर दे राही घर दे च प्रवेश मिले वो दर घर दा हिस्सा होंदा है, अलग नहीं है। दो शब्द मैं दोहरावां खुलासा बाद दे, जो प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है ओही शब्द दे रूप दे च गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे च गुरु है ओही प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है, और जो प्रकाश दे रूप दे च घर है ओही शब्द दे रूप दे च दर है, जो शब्द दे रूप दे च दर है ओही प्रकाश दे रूप दे च घर है। प्रकाश दे रूप दे च घर परमात्मा है, शब्द दो रूप दे च दर गुरु है। नानक सो दे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। व्यापक है परमात्मा, व्यापक है गुरु, जो व्यापक नहीं वो परमात्मा नहीं, जो व्यापक नहीं वो गुरु भी नहीं। सदा अंग संगे अभंगंग बेबूते परमात्मा, गुरु मेरे संग सदा है नाले व्यापक। बड़े ध्यान नाल सुनना, जो व्यापक नहीं वो गुरु नहीं, जो व्यापक नहीं वो परमात्मा नहीं। प्रकाश दे रूप दे सता दे रूप दे शक्ति दे रूप विच परमात्मा व्यापक है, शब्द दे रूप दे परमात्मा व्यापक है। शब्द नूं दर क्यों कहा है, ये सारा संसार शब्द तो आया है। दरवाजा दो काम करता है, तुसी दरवाजे दे राही अंदर दाखिल हो जाओ, ऐसे ही दरवाजे दे राही बाहर जाओगे। दरवाजे दे च बंदा बैठदा नहीं, सौंदा नहीं, दरवाजा आण जाण लई आउंदा। शब्द दे राही संसार दी उत्पत्ति आउंदी है, शब्द दे राही परले हो जांदी है। पंक्तियां सुनो, उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उत्पत होवे। शब्द तो उत्पत्ति आउंदी है, शब्द तो परले हो जांदी है, फिर शब्द तो उत्पत्ति आउंदी है। हुण मैं दोहरावां, समा है नहीं सी, इस वास्ते अंदाजन आख्या जा सकदा है करोड़ां अरबां साल तक, भावें साल नहीं सन,

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर महापुरुषां दी याद अंदर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत बचना दा कीर्तन आप जी सरवण कर रहे सी। अति सत्कार योग भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी सोढ़ी आप जी नू अमृत बचन और गुरमत दियां विचारां श्रवण करा रहे सन। जितने भी आपां सतगुरु जी दी चरण शरण विच आए हां तन करके सतगुरु दे पवित्र दरबार दी हाजरी भरी है ते एक यतन करिए कि मन करके भी गुरु जी दे चरणा दी हाजरी भरी जाए। घटो घट जदों गुरु संगत विच आपां आउने आ उदों सचमुच अपने मन दे फुरनिया वल झाती मारीए क्योंकि सत संगत एक ऐसी परमात्मा दी दात है कि जिथे परमेश्वर दे रंग रतड़े भी आए बैठे हुंदे ने ते कई वरी उन्हां दे नजदीक बैठियां जेड़े उन्हां अंदरों ख्याल उन्हां अंदरों वेव्स उन्हां अंदरों जेड़ियां तरंगा पैदा हुंदियां ने ओ वासना वाले मन नूं भी शुद्ध कर जांदियां ने। सतगुरु जी ने बाणी विच बचन कीता है कि पोह फुटी सी ते परमात्मा दी बंदगी करन वाले परमात्मा दे रंग विच रते होए जदों साईं दी याद विच जुड़े ते उन्हां दे शरीर विचों निकलियां होईयां तरंगां ने रुखां उत्ते बैठे हुए पंछियां नूं भी परमात्मा दे गीत गाउण लई मजबूर कर दिता। असी अमृत बचन पढ़ने हां कि चिड़ी चौकी पहो फुटी वगन बहुत तरंग भावां तरंग दा अर्थ केवल खवावां कीता गया कि पहो फुटाला होया अनेकां खवा चलदियां पईयां ने ते पहो फुटाले दे नाल चिड़ियां चहकना शुरू कीता। पर जे इस शलोक दी डूंघाई विच आपां जाइए ते ए पहली तुक तां अखरी अर्थ यही बन गए कि पौ फुटाला सी तरंगा उठियां ते चिड़ियां चहकन लग पईयां। पर अगले बचन ने के अचरज रूप संतन रचे नानक नामे रंग जेड़ा अचरज रूप बंदगी करन वालियां दा अमृत वेले है असल विच बाहर दियां खवावां नहीं उन्हां दे पवित्र शरीर विचों निकलदियां होईयां रूहानियत दियां तरंगां ने एक निक्के जे परंदे नूं भी रब दे गीत गाउण वास्ते उत्साहित कर दिता। चिड़ी चौकी पौ फुटी वगन बहुत तरंग अचरज रूप संतन रचे नानक नामे रंग। बाबा फरीद जी ने शायद उन्हां पंछियां दे चहकने विचों उन्हां पंछियां दे निक्की चुंज विचों निकली कोई आवाज नूं सुनिया ते अपने मुख तो बचन कह दिता खौ बलखारी तिना पंखियां। उन्हां दा संबंध रूहानियत नाल है खौ बलखारी तिना पंखियां जंगल जिन्ना वास ककर चुगण
ਥਲ ਵਸਣ ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਰੱਬ ਨਾ ਛੋਡਣ ਪਾਸ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਦੇ ਰੋੜ ਨੇ, ਕੱਕਰ ਚੁਗਣ ਕੰਕਰੀਟ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਰੋੜ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਟਿੱਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਦੂਸਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਆਓ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸੁਮਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੰਨ 1704 ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੱਟੀ ਔਰ ਮਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਵਾਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ

जे विद मन को संसार चूके पावनिद पार परों जन्म पाए कछ पलो न कीनो ताते अदक डरों गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजियो

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वाल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलदा, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: बीज मंत्र सर को ज्ञान
1: चौवर नामे जपे को नाम
0: जो जो जपे तिसकी गत होए
1: सत्संग पावेजन कोए
0: कर कृपा अंतर उरतार है
1: बस प्रेत मुक्त पात्र को तार है
0: सर्व रोग का यो खद नाम
1: ज्ञान रूप मंगल गुण गाम
0: काहू जुगत कितै न पाईया धर्म
1: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
0: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
1: जिसका नाम सत राम दास
0: आत्म राम तिस नदरी आया
1: दास संतन पाए तिन पाया
0: सदा नित निकट हर जान
1: सो दास दर का परवान
0: अपने दास को आप कृपा करे
1: जिस दास को सब सोजी पर है
0: सगल संग आत्म उदास
1: ऐसी जुगत नानक राम दास
0: सब की आज्ञा आत्म हितावै
1: जीवन मुक्त सो कहावै
0: ऐसा हरत तैसा उस होग
1: सदा अनंत नहीं वियोग
0: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी
1: ऐसा अमृत तैसी बिखाटी
0: ऐसा मान तैसा अभिमान
1: ऐसा रंग तैसा राजान
0: जो बरताये साई जुगत
1: नानक को पुरख कहिए जीवन मुक्त
0: पार ब्रह्म के सगले ठाऊ
1: जित जित घर रखे तैसा तिन नाम
0: आपे कर्म करावन जोग
1: भावै सोई पन होग
0: असरे आप हो अंत तरंग
1: लखन जाहे पार ब्रह्म के रंग
0: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
1: पार ब्रह्म करता अविनाश
0: सदा सदा सदा दयाल
1: सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक
0: उस्त करे अनेक जन अंत न पारावार
1: नानक रचना प्रवरची बहुविधानक प्रकार अष्टपदी
0: कई कोट होए पुजारी
1: कई कोट आचार व्यवहारी
0: कई कोट पै तीर्थ वासी
1: कई कोट बन प्रमय उदासी
0: कई कोट वेद के श्रोते
1: कई कोट तपीसर होते
0: कई कोट आत्म ध्यान धारी
1: कई कोट कब काव विचारे
0: कई कोट नवतन नाम त्या वहे
1: नान करते का अंत न पावे
0: कई कोट भय अभिमानी
1: कई कोट अंध अज्ञानी
0: कई कोट कृपन कठोर
1: कई कोट अभिक आत्म ने को
0: कई कोट पर दर्भ को हिरहे
1: कई कोट पर दुख न करे
0: कई कोट माया श्रम माहे
1: कई कोट पर देश परमा है
0: जित जित लाभ होते तित लगना
1: नानक करते की जाने करता रचना
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
1: कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प उपाए
1: कई कोट पात्र ब्रिक जाए
0: कई कोट पवन पानी में संतर
1: कई कोट देश भूमंडल
0: कई कोट शशि सूर नक्षत्र
1: कई कोट देव दानव इंद्र शिव छत्र
0: सगल समग्री अपने सूत धार
1: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है
0: कई कोट राजस तम सातक
1: कई कोट वेद प्राण स्मृति अर्शास्त्र
0: कई कोट किए रतन समुंद
1: कई कोट नाना प्रकार जंत
0: कई कोट किए चिर जीवे
1: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे
0: कई कोट जख के निर्पसाच
1: कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगा
0: सबे नेरा सब हूं ते दूर
1: नानक आप लिप्त प्रभुर
0: कई कोट पाताल के वासी
1: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी
0: कई कोट जन्म है जीव है मर है
1: कई कोट बहुत जोनी फिर
0: कई कोट बैठ सही खाहे
1: कई कोट काले तक पाहे
0: कई कोट की ये धनवंत
1: कई कोट मैं चिंत
0: जय जय भाणा तह तह राखी
1: नानक सब कुछ प्रभ के हाथे
0: कई कोट भय वैरागी
1: राम नाम संग तिन लिव लागी
0: कई कोट प्रभ को खोजंते
1: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते
0: कई कोट दर्शन प्रप्यास
1: को मिलियो प्रभ विनाश
0: कई कोट मांग है सत्संग
1: ब्रह्म तिन लागा रंग
0: जिनको होए आप सो प्रसन्न
1: नानक तेजन सदा धन धन
0: कई कोट खानी अरखंड
1: कई कोट आकाश ब्रह्मांड
0: कई कोट होए अवतार
1: कई जग की विस्तार
0: कई बार पसरियो पासार
1: सदा सदा एक एक अंकार
0: कई कोट कीने बहु भांत
1: प्राप्त होए प्रभु महे समात
0: ताका अंत न जाने कोई
1: आपे आप नानक प्रभु सोए
0: कई कोट पार ब्रह्म के दास
1: जिन हो वत्या तन प्रगास
0: कई कोट तत् के बेते
1: सदा नहारे एको नेत्रे
0: कई कोट नाम रस पीव है
1: अमर भय सद सद ही जीव है
0: कई कोट नाम गुण गावे
1: आत्म रस समावे
0: अपने जन को साथ साथ संभारी
1: नानक हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक
0: करण कारण प्रभ एक है दूसर नहीं कोई
1: नानक तिस बलहार ने जल थल मैयल सोए अष्टपदी
0: कर्ण करावन करना जोग
1: ज्योत भावे सोई होग
0: फिर मैं था उप नहारा
1: अंत नहीं किश पारा वारा
0: हुक्मे धार अतार रहावे
1: हुक्मे उपजे हुक्म समावे
0: हुक्मे ऊच नीच व्यवहार
1: हुक्मे अनक रंग प्रकार
0: कर दिते अपनी वडियाई
1: नानक सब में रहा समाई
0: रब भावे मानो गत पावे
1: रब भावे ता पात्र त्रावे
0: रब भावे बिन सास ते रखे
1: रब भावे ता हर गुण पाख है
0: रब भावे ता पत उधार है
1: आप करे अपन विचार है
0: दोहा श्रिया का आप स्वामी
1: खेले अंतर जामी
0: जो भावे सो कार करावे
1: नानक दृष्टि अवर न आवे
0: ओ मनुख ते क्या होए आवे
1: ज्योत भावे सोई करावे
0: किसके हाथ होए ता सब पिछले
1: ज्योत भावे सोई करे
0: मन जानत बिखिया महरच है
1: जे जानते अपने आप बचे
0: धर्मे भूला दह दिस धावे
1: नमक माहे चार कुंठ फिर आवे
0: कर कृपा जिस अपनी भक्त दे
1: नानक तेजन नाम मिले
0: छिनवै नीच कीट को राज
1: बार ब्रह्म गरीब नवाज
0: जाका दृष्ट कछु न आवे
1: इस तत्काल दिस प्रगटावे
0: जाको अपनी कर ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼,
1: ਆਖਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣੇ ਜਗਦੀਸ਼,
0: ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਕੀ ਰਾਸ,
1: ਕਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ,
0: ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ,
1: ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ,
0: ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ,
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭ ਕੋ ਨਾਥ,
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀਓ,
1: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਪੁਨ ਥੀ,
0: ਪ੍ਰਭੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ,
1: ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਗ ਹਰ ਕਰੰਗ ਹੱਸੈ,
0: ਪ੍ਰਭੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ,
1: ਪ੍ਰਭੂ ਊਬਾ ਕਾਸ ਪਿਆਲ,
0: ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ,
1: ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰ,
0: ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ,
1: ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਏ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ,
0: ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ,
1: ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤਰ ਵਾਲ,
0: ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ,
1: ਪ੍ਰਭੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ,
0: ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ,
1: ਪ੍ਰਭੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ,
0: ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ,
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੈ,
0: ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ,
1: ਪ੍ਰਭੂ ਮੋਹਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ,
0: ਪ੍ਰਭੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ,
1: ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ,
0: ਪ੍ਰਭੂ ਕੀਟ ਹਸ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਦੀਆ,
1: ਅਨਕ ਜੋਨ ਪਰਮੈ ਪਰਮੀਆ,
0: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ,
1: ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ,
0: ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ,
1: ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ,
0: ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੈ,
1: ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੋਰ ਨ ਆਵੈ,
0: ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ,
1: ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ,
0: ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗ,
1: ਸਦਾ ਬਸੈ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ,
0: ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਕਟਾਨਾ,
1: ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ,
0: ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ,
1: ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ,
0: ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ, ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ,
1: ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ,
1: ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ,
0: ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ,
1: ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ,
0: ਪਾਪ ਸਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ,
1: ਜਨਮ ਮਰੈ ਭਉ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੈ,
0: ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ,
1: ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ,
0: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ,
1: ਨਾਨਕੀ ਹੈ ਮੁਕਤਿਆ ਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ,
0: ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਭਾਵੈ,
1: ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਾ ਸਟੰਗ ਨ ਜਾਵੈ,
0: ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਨੁੱਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ,
1: ਸਵਰ ਭੀਤਰਤਾ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼,
0: ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ,
1: ਹੋਏ ਜਾਏ ਬਸਵੰਤ,
0: ਸੈਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਹੰਕਾਰੀ,
1: ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ,
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ,
1: ਸੋਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗੈ ਪ੍ਰਵਾਨ,
0: ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹੋਂ ਧਾਰੀ,
1: ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੇ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ,
0: ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ,
1: ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ,
0: ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ,
1: ਹਰ ਦਰਗੈ ਕਉ ਕੈਸੇ ਗਵੈ,
0: ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ,
1: ਸਿਰ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ,
0: ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ,
1: ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ,
0: ਜਗ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ,
1: ਤਬੇ ਸਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ,
0: ਜਗ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ,
1: ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ,
0: ਜਗ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ,
1: ਤਬਲਕ ਨੇਚਰ ਨਾਹੀ ਚੀਤ,
0: ਜਬਲਕ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ,
1: ਤਬਲਕ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇਸ ਜਾਏ,
0: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ,
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਾਂ ਛੁਟੈ,
0: ਸਹਿਸ ਕਟੇ ਲਖ ਕੋਟ ਧਾਵੈ,
1: ਤ੍ਰਿਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ,
0: ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ,
1: ਨੈਤ ਬਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ,
0: ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ,
1: ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਫਿਰ ਤੇ ਸਭ ਕਾਜੈ,
0: ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ,
1: ਪ੍ਰਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ,
0: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ,
1: ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪ,
0: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ,
1: ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ,
0: ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ,
1: ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ,
0: ਜੋ ਕਿਛ ਪੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣਾ ਰੰਗ,
1: ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਸੰਗ,
0: ਦੂਜਾ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ,
1: ਆਪੇ ਏਕਾ ਪੈ ਅਨੇਕ,
0: ਮਰੈ ਨਾ ਪਿੰਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ,
1: ਨਾਨਕ ਸਭ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ,
0: ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ,
1: ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ,
0: ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਣ ਵਿਸਥਾਰ,
1: ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ,
0: ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ,
1: ਆਂਤ ਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ,
0: ਆਪਣੇ ਚਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ,
1: ਗੌਤ ਕਰੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ,
0: ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ,
1: ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ,
0: ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ,
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਿਖਿਆਨੀ,
0: ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਤ ਸਭ ਕੀਨਾ,
1: ਕੋਟ ਮਦੈ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਚੀਨਾ,
0: ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ,
1: ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਆਪਾਰ ਅਨੂਪ,
0: ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ,
1: ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸਰ ਹੁਣ ਵਿਖਿਆਣੀ,
0: ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ,
1: ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਲੋਕ,
0: ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ, ਸੋ ਜਨ ਉਦਰ ਨਹਾਰ,
1: ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ,
0: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਆਰਜਾ ਘਟੈ,
1: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਜਮਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੈ,
0: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ,
1: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ,
0: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ,
1: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ,
0: ਸੰਤ ਕੇ ਹਥੇ ਕੋ ਰੱਖੈ ਨਾ ਕੋਈ,
1: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ,
0: ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ,
1: ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਬੀਤਰੈ,
0: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਭਵੈ,
1: ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਕਾਗ ਜਿਉ ਲਵੈ,
0: ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ,
1: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਕਰਮਾਏ,
0: ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਹਿ ਜਲੈ,
1: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਭ ਕੋ ਛਲੈ,
0: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤੇਜ ਸਭ ਜਾਏ,
1: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨੀਚ ਨਿਚਾਏ,
0: ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਓ ਕੋ ਨਾਹੀ,
1: ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀ ਕਤ ਪਾਏ,
0: ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਅਤਤਾਈ,
1: ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਕਿਨ ਟਿਕਣ ਨ ਪਾਈ,
0: ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਹਥਿਆਰਾ,
1: ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ,
0: ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ,
1: ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆ ਅਰਦੀਨ,
0: ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਰਬ ਰੋਗ,
1: ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਦਾ ਬਿਜੋਗ,
0: ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ,
1: ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਵੀ ਹੋਏ ਮੋਖ,
0: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿੱਤ,
1: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ,
0: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਡਾਨ ਲੱਗੈ,
1: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਸਭ त्यागै
0: संत का दुखी महा अहंकारी
1: संत का दुखी सदा बेकारी
0: संत का दुखी जन्मै मरै
1: संत की दुख न सुख ते तरै
0: संत के दुखी को नाहीं ठाऊ
1: नानक संत भावे ता लए मिलाए
0: संत का दुखी अद बीज ते टूटै
1: संत का दुखी कित काज न पहुंचै
0: संत के दुखी को उद्यान परमाइयै
1: संत का दुखी उजड़ पाइयै
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा
1: जो सास बिना मृत की लोथा
0: संत के दुखी की जड़ किछ नाही
1: अपन बीजा पे ही खाहे
0: संत के दुखी को अवर न रख नहार
1: नानक संत भावे ता लए उबार
0: संत का दुखी इउं बिललाए
1: जो जल पे हुन मछली तड़फड़ाए
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजै
1: जो पावक ईंधन नहीं त्रापै
0: संत का दुखी छुटै अकेला
1: जो गुआर तेरे खेत माहे दुहेला
0: संत का दुखी धर्म ते रहत
1: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
0: कीर्तन दिक्का धुर ही पया
1: नानक जो तिस भावे सोई थिया
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
1: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाइयै
1: संत का दुखी ना मरै ना जिवाइयै
0: संत के दुखी की पूजै न आसा
1: संत का दुखी उठ चले निराशा
0: संत के दुख न दृष्टै कोई
1: जैसा भावे तैसा कोई होए
0: पया कीर्तन मिटै कोई
1: नानक जाने सच्चा सोए
0: सब कर तिसकी ओ करनै हार
1: सदा सदा तिस को नमस्कार
0: रबी उसत करहो दिन रात
1: तिसे त्याहु सास ग्रास
0: सब कछ वर्तै तिसका किया
1: जैसा करे तैसा को थिया
0: अपना खेला करनै हार
1: दूसर कौन कहे विचार
0: जिसनु कृपा करै तिस आपन नाम दे
1: वड पागी नानक जन से श्लोक
0: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राय
1: एकास हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्टपदी
0: मनुख की टेक बिरथी सब जान
1: देवन पौ एक है भगवान
0: जिसके दिया रह अगाहे
1: और न तृष्णा लागे आए
0: मारे राखे एको आप
1: मानक कृष्णा ही हाथ
0: जिसका हुक्म भू सुख होए
1: जिसका नाम रख कंठ परोए
0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए
1: नानक बिघन न लागे कोए
0: उसत मन में कर निरंकार
1: कर मन मेरे सत व्यवहार
0: निर्मल रसना अमृत पियो
1: सदा सहेला कर ले जियो
0: नैनो बेग ठाकुर का रंग
1: सदा संग बिन सह सब संग
0: चरण चलो मार्ग गोविंद
1: मिटे पाप जपिए हर बिंद
0: हर हर कर्म श्रवण हर कथा
1: दरगह नानक उजल मथा
0: बड़ भागी ते जन जग माहे
1: सदा सदा हर के गुण गाहे
0: राम नाम जो करे विचार
1: चेतन मंतगनी संसार
0: मन तन मुख बोले हर मुखी
1: सदा सदा जानो ते सुखी
0: एको एक एक पछानै
1: ते तुत कियो सोजी जानै
0: नाम संग जिसका मन मानिया
1: नानक तने निरंजन जानिया
0: गुर प्रसाद अपने आप सुजै
1: जिसकी जानो तृष्णा बुझै
0: सात संग हर हर जस कहत
1: सर्व रोग त्यो हर जन रहत
0: धन दिन कीर्तन केवल बखियान
1: मैं सोई निर्वाण
0: एक ऊपर जिस जन की आशा
1: जिसकी कटिए जन की फसा
0: पार ब्रह्म की जिस मन भूख
1: नानक प्रसन्न लागे दुख
0: जिसको हर ब्रह्म मन चित आवे
1: सो संत सोहेला नहीं जुलावे
0: जिस प्रभु अपना कृपा करे
1: सो सेवक को किसते डरे
0: जैसा सत ऐसा दृष्ट आया
1: अपने कार्य में आप समाया
0: सोधत सोधत सोधत सीजया
1: प्रसाद तत् सब पूजया
0: जब देखो तब सब शमूल
1: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल
0: मैं किस जन मैंने किस मरे
1: अपने चलते आप ही करे
0: आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट
1: आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट
0: आपे आप सगल मह आप
1: अनक जुगत रच था व्यो था
0: अविनाशी ना ही किस खंड
1: धारण धार रहे ब्रह्मांड
0: अलख पे पुरख प्रताप
1: आप जपाए तन नानक जाप
0: जिन प्रभ जाता सो सो पावंत
1: सगल संसार उदर तन मंत
0: प्रभ के सेवक सगल उदारण
1: प्रभ के सेवक दुख विसारण
0: आपे मेल लय कृपाल
1: गुर का शब्द जप भय निहाल
0: उनकी सेवा सो ही लागे
1: जिसनो कृपा करे बट भागे
0: नाम जपत पावे विश्राम
1: नानक तन पुरख को उत्तम कर मान
0: जो किस करे सो प्रभ कै रंग
1: सदा सदा बसै हर संग
0: सुपाई हो वैसो होए
1: करने हार पछाने सोए
0: सब का किया जन मीठ लगाना
1: जैसा सत ऐसा दृष्टाना
0: जिसकी उपजे तिस माहे समाए
1: सुख निधान उन्हों बने

0: बराबर और ना कोए, कोई सूरबीर, कोई छत्रपति राजा, कोई छोटी दा ज्ञानी, कोई छोटी दा दार्शनिक ते साइंटिस्ट उथे नहीं पहुंच सकदा जिथे भगत पहुंच जांदा, जिथे ब्रह्म ज्ञानी जो है पहुंच जांदा है। तो मैं फिर अर्ज करा, दर घर की सौजी ना है, घर है परमात्मा, दर है गुरु। और दर घर नालों अलग नहीं आता, उसे नु दर कहते जो घर दे नाल लगे हुए। ते घर दे च जाना है, दर दे चो लंघना पेगा, दर दे च लंघ के घर दे च प्रवेश मिलेगा। दो शब्द में कवा खुलासा फिर, जो प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है, ओ ही शब्द दे रूप दे च गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे च गुरु है ओ ही प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है। और जो प्रकाश दे रूप दे च घर है ओ ही शब्द दे रूप दे च दर है, और जो शब्द दे रूप दे च दर है ओ ही प्रकाश दे रूप दे च घर है। जो परमात्मा दे रूप दे च घर है ओ ही गुरु दे रूप दे च दर है, और जो गुरु दे रूप दे च दर है ओ ही परमात्मा दे रूप दे च घर है। नानक सो दे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुरु नाही पे। पार ब्रह्म ते गुरु दे च भेद नहीं है, ते जे भेद ही नहीं है तो फिर दो नाम क्यों ने, ए गुरु ए प्रभु, ए परमात्मा ए गुरु है। अगर भेद नहीं, दोवे एक ने, तो फिर दोहां दा नाम एक होना चाहिए। दो नाम ने, दोहां दियां क्रियावां वख वख ने, तो फिर दो हस्तियां होनियां, दो हस्तियां नहीं है। नानक सो दे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुरु नाई भेद। पार ब्रह्म ते गुरु दे च कोई भेद नहीं। दर घर नू लगे होया है, घर दर दे नाल जुड़े होया है। प्रभु गुरु दे नाल जुड़े होया है, गुरु प्रभु दे नाल जुड़े होया है। इंज दर घर दे नाल जुड़े होया है, घर दर दे नाल जुड़े है। सो दर के हा, सो घर के हा। इस दर तक साडा तन जाएगा कतई नहीं, कतई नहीं, तन जा ही नहीं सकता। निराकार दे देश ए आकार तन नहीं जा सकता। निरंकार दा देश जेदा कोई आकार नहीं, चक्र नहीं, चिन्ह नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, ए तन नहीं जा सकता। तन ते इत्थे रह जाएगा। निरंकार दे देश साडा मन जा सकता है, साडा मन जा सकता है। कारण ए मन आया भी सीधा सीधे रूप देच निरंकार तो आया। इस वास्ते गुरबाणी कहती है, तन ते मिट्टी, ए मिट्टी इत्थे रह जाएगी। मन जोत है, ए जोत देच जोत हो सकता है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछा। मन सूक्ष्म शरीर है, इनरल बॉडी है। शरीर दे अंदर एक सूक्ष्म शरीर। कई पुरुष इस ढंग नाल भी जींदे ने और इतनी उच्ची जिंदगी बतीत करदे ने। वक्ती तौर ते सूक्ष्म शरीर दा संबंध अस्थूल शरीर नाल तोड़ भी देंदे ने, कुछ दिनां लई, कुछ घंटियां लई, कुछ समय लई। सनातन जगदे महान जगत गुरु शंकराचार्य एक महीने अपने शरीर चो निकल गए। इन्होंने अपना सूक्ष्म शरीर जिन्हों जोत कहिंदे ने, मन कहिंदे ने, कढ दिता। चेलियां नू कहा इस शरीर की रक्षा करने, मैं एक महीने बाद आवांगा। पिछोकड़ सारी गाथा ना सुनावा। ये राम राय भी कर लेंदे सन, धन गुरु हर राय साहब जी दे साहिबजादे। अपनी पत्नी नू कहा मैं सत दिन बाद आवांगा। मैं होर मंडलां दे जाना। मेरी देही दा ख्याल रखें, मेरे शरीर दा ख्याल रखें। राम राय। मसंदा नू मौका मिल गया, राम राय दी देही नू अग ला देईए ते आपां खुद गुरु बने। ए विचकार रोड़ है, इनू हटाओ। अर्थी सजा ली, अर्थी कढ़न लगे। राम राय दी पत्नी जारो जार रोंदी है, दुष्टो एक हफ्ता तो उड़ीक करो। अज ते तीन दिन हो गए, मैनू कह गए ने सत दिन बाद मैं आवांगा, उड़ीक करो। नहीं, ये मर गए ना, ये मर गए। बड़े उसने तरले पाए, बड़े उसने रुदन कीता, मसंदा दी ताकत लै गए शमशान घाट, अग ला दिती, अद्धा शरीर जल गया। राम राय दा सूक्ष्म शरीर आया। पर पिंजरा जल चुकिया सी, घर जल चुकिया सी, घर रहण दे लायक नहीं रहा सी। फिर भी उस सूक्ष्म शरीर ने अस्थूल शरीर दे प्रवेश करन दी पूरी कोशिश की थी। अग उस सूक्ष्म शरीर नो नहीं साड़दी, पानी नहीं डोबदा। उस शरीर दे प्रवेश करके राम राय उच्ची आवाज दे बोले, दुष्टो मसंदो, तुसी मैनू जिंदा साड़े है, गुरु थानू जिंदा साड़ेगा। तुसी मैनू जिंदा जला दिता है, गुरु थानू जिंदा जलाएगा। इन्हां सारिया ही मसंदा नू देहरादून दे जिंदा जलाया गया। इस तरह दी अनेकां घटनावां ने आपां जितने बैठे ने इतने सत्संग दे सूक्ष्म शरीर होणगे, इतने होणगे। किहड़े सूक्ष्म शरीर? प्रथम ते ओ सिद्ध पुरुष जो इस अस्थूल देही दे किधरे भी होन, कि किसे सत्संग नू मन भावदा ओ देख लैन दूरों, ते शरीर नाल पहुंचना बड़ा औखा होवे, सूक्ष्म शरीर कढ़ लैंदे ने पहुंच जा। प्रथम। दूसरा, जिन्हां दी मौत हो गई, शरीर दी मौत हो गई, इहदी मौत ढेरी हो जांदा, मिट्टी हो जांदा, सूक्ष्म शरीर ना जलाया जांदा ना ढेरी होंदा। आम हालात विच शरीर दी मृत्यु तो बाद सूक्ष्म शरीर 13 दिनां दे अंदर किधरे ना किधरे गर्भ विच प्रवेश कर जांदा है। हर वक्त मौत हो रही है, हर वक्त गर्भ विच प्रवेश करन दी सहूलियत संसार विच मौजूद है। 13 दिनां दे अंदर अंदर इस सूक्ष्म देही किधरे ना किधरे प्रवेश कर जांदी है। जो आम साधारण लोग ने, साधारण किसनों कहोगे, सच भी बोलते रहे, झूठ भी बोलते रहे, पुन भी करते रहे, पाप भी करते रहे, सत्संग भी करते रहे, कुसंगत भी करते रहे, चल के गुरबाणी की कथा भी सुनिए, गुरबाणी का पाठ भी करिए, गंदे गीत भी अलापीए, कदम अगे चलते रहे, कदम पिछे चलते रहे, ना अगे गए ना पिछे गए, उत्थे दे उत्थे इन्हां नूं साधारण कहिंदे। ये 13 दिनां दे अंदर किधरे ना किधरे गर्भ दे च प्रवेश कर जांदे। जिहड़े असाधारण, साधारण नहीं ने, असाधारण। असाधारण कौन? बड़ा भजन कीता है, बड़ा नाम जपे, बड़ी सेवा कीती है, बड़ी बंदगी कीती है, लेकिन मोक्ष गति तक नहीं पहुंच सके, दर तक नहीं पहुंच सके, घर तक नहीं पहुंच सके, रास्ते ही रह गए। दर दी समझ नहीं सी, समझ सी, घर दी समझ नहीं सी, समझ सी, फिर क्यों नहीं पहुंचे? वाट लंबी है, पेंडा बिखड़ा है। तुसी आखोगे ओ रस्ता केड़ा है, ओ पेंडा केड़ा है, हुण मैं अर्ज करा, ओ चलन दे नाल ही रस्ता बनदा, उंज कोई नहीं, उंज कोई नहीं। दो पंक्तियां मैं थानू सरवण करावा। गुरमुख खोज अगम है ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा, गुरमुख खोज अलक है ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। मच्छी जैसे पानी विच चल रही है, उदे चलन नाल रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं, कोई रस्ता नहीं, चल रही है ते रस्ता बनता है, उंज नहीं है। पंछी आकाश दे जद उड़दा है, उड़दे ही मार्ग बनता है, उंज कोई मार्ग नहीं है। गुरमुख अभ्यासी जैसे वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा है, जपण नाल रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं, कोई रस्ता, जपदे ही रस्ता बने। गुरमुख खोज अगम है ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा, मच्छी चल पई रस्ता बनता गया। इन्हें जप आरंभ कर दिता है अमृत वेले, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कि जपना व्यर्थ नहीं जाएगा, एक तिल नहीं बनेगा ले व्यर्थ नहीं जाएगी, रास्ता बनेगा। ये गल वखरी है कि जीवन रस्ते च ही रह जाए या घर पहुंचे, जिड़े चलते पै पर रस्ते च ही रह गए, घर तक ना पहुंचे, इन्हां नूं असाधारण कहिंदे ने। ये साधारण लोग नहीं ने, असाधारण ने। ये सूक्ष्म देह ही बहुत जल्द जन्म नहीं लेंदी, ये सूक्ष्म शरीर बहुत छेती गर्भ दे च प्रवेश नहीं करता। क्यों? जितनी वाट इसने तय कीती है चल चल के, इतने ही संस्कारां वाली कोई मां होवे तां गर्भ दे च प्रवेश करनगे, वरना नहीं। इस तरह की कोई मां होवे जिहड़े उन्हां कोल संस्कार ने चल चल के, जो उन्हां नूं अनुभव मिले है। दूसरे असाधारण कौन? जैसे 2.5 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर, औरंगजेब अपने 3 भरावां नूं मार के, भतीजियां नूं मार के, अपने प्यो नूं जेल दे च पा के सिंघासन ते बैठा है। ये कम कोई ओ कर सकदा जिहदे कोल दिल नहीं पत्थर होवे, दिमाग ना जड़ होवे, मनुख ना वैशी होवे, दरिंदा होवे, ओ कर सकदा। भतीजियां नूं भी मार दो, भरावां नूं भी मार दो, बुढ़े प्यो नूं भी जेल दे तड़पा के मारो। वड्डी भैन जहां आरा आई, उन्हों जद पता चलिया कि दारे नूं भी मार दिता है, सुनिया सी उसने पहले शुजा नूं मार दिता है, मुराद नूं मार दिता है, पर जद हुण पता चलिया दारे नूं भी मार दिता है। दारा बड़ा नेक तबीयत इंसान सी, दानी मिजाज सी, और ज्ञानी सी, शायर सी, कवि सी, विद्वान सी, सूफी फकीरां दी ज्यादा संगत विच रहिंदा सी, फकीर तबीयत इंसान सी। जहां आ रहा है वड्डी भैन इस बिरा नाल बड़ा प्यार कर दी सी, और बड़िया दुआवां देंदी सी, तो खुदा दे मार्ग ते चले हैं, खुदा तेनू अपने घर तक पहुंचावे, तेनू पूरे बोध हासिल होवे। पर जद पता चलिया, बड़ी बेदर्दी नाल औरंगजेब ने दारे नूं भी कतल कर दिता। रोंदी हुई आई औरंगजेब कोल, पहले ते बड़ी ताड़ना कीती, मूर्खा तू ये की कीता, मासूम बेरा खुदा तरस बेरा खुदा शनास जो सी, और बड़ा फैज दिल बंदा फयाज दिल बंदा, बड़ा दानी मिजाज दा, तू उन्हों भी मार दिता है। कहने अंदर इतना जोश आया, जहां आरा ने हथ चुक लिया औरंगजेब नो मारन वास्ते, ए तो की कीता। औरंगजेब ने उसे वक्त उदी गुत पकड़ी, घसीट के लै गया जिस कमरे दे च प्यो बंद सी, नाल दे कमरे च उन्हों बंद कीता। 7 साल बिचारी जेल दे च रही है। ये कम कोई ओ कर सकदा है जिहदे कोल दिल नहीं पत्थर होवे, जिहदे कोल दिमाग नहीं सिर्फ जड़ भूसा होवे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਿਟਲਰ ਜੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰਨਾਕ ਜੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਤਨਾ ਮੋੜ, ਕਿਤਨਾ ਅਚੇਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕਰ ਗਿਆ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਜਲ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਥਲ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਪਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਈਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੰਗ ਤੇ ਤੜਪ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਰਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਦੀ ਬੇਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੋ ਐਸਾ ਮਹਾਰਸ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਐਸਾ ਸੁਖ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਨੁੱਖ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਸ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੇਖਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਦਾ, ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਜਾਣਿਆ ਦੂਰੀ ਦੇ। ਸਦਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਸਦਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲਨਤਾ, ਸਦਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ। ਅਨਾਹਦ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਵੇਖਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਐਸੀ ਤੋਫੀਕ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਐ ਜ਼ਫਰ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਕਬ, ਇਨਸਾਨ ਸੇ ਬੜਕਰ, ਮਲਿਕ ਕੋ, ਦੇਵ ਕੋ, ਜਿਨ ਕੋ, ਪਰੀ ਕੋ, ਊਰੇ ਗਿਲਮਾ ਕੋ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਅਜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਅਜੇ ਪਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਤੇ ਅਜੇ ਬਨਸਪਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ। ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪਿਛਲਿਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਐਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4:30 ਕਿ ਕੌਣ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿਸ਼ ਵਕਤਾ ਹੋ, ਭਵਿਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਭਵਿਸ਼ ਵਕਤਾ, ਭਵਿਸ਼ ਜਾਣਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਕੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਦਿੱਲੀ? 21 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿਸ਼ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਵਿਸ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਵਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। चंगा कारोबार मिल गया परेशानियां नहीं जानगी। बड़ी धन संपदा मिल गई, रहन नू उच्चा महल मकान मिल गया बेचैनी नहीं जाएगी। बड़ा बैंक बैलेंस हो गया, नोटां दे अंबार लग गए ने, व्याकुलता नहीं जाएगी, दुख नहीं जाएगा, दुख नहीं जाएगा, बेचैनी नहीं जाएगी, परेशानी नहीं जाएगी, चिंता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उदों मिटन गए जिस दिन परमात्मा मिलेगा, उस तो पहले नहीं। दुख भी बनिया रहेगा, संताप भी बनिया रहेगा कि होया तू चोटी दा धनवान हो, दुख भी बनिया रहेगा, चिंता भी बनी रहेगी कि होया तू दार्शनिक ते फिलोसफर हो, दुख भी बनिया रहेगा, कलेश भी बनिया रहेगा कि होया तू बहुत बड़ा शक्तिशाली राजनैतिक हो जाए, धनवान हो जाए, कि होया तेरा महल उच्चा हो गया, मकान बहुत बड़ा हो गया। दिल दी व्याकुलता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उस दिन मिटेगा जिस दिन तो परमात्मा हो जाएगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए, भगत कबीर ऐलानिया कहंदे ने, बिगड़ियो कबीरा राम धोआई, साच भयो अन कते न जाए। कहंदा संतां दी संगत दे आपां ऐसे तब्दील होए की हो गए, सच हो गए। हुण सच ते परमात्मा, तो कबीर कहंदे ने होवेगा परमात्मा सच, आपां वी सच हो गए। ध्यान नाल सुनना, बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई, मैं सच हो गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी, मैं कर सारे मनुखां दा एक कोई भविष्य है, राम हो जाना, भगवान हो जाना, परमात्मा हो जाना। ते परमात्मा होण दे वसीले परमात्मा ने बख्शे हुए ने, सारिया नू दिते हुए ने, सीमत ने, ये असीम हो सकते ने। उन्हों याद कर करके किवें उसनों याद करिए, पहले दर तक पहुंची है, फिर दर ने ही घर दे प्रवेश करा देना। इतनी सेवा इस वक्त कबूल करनी, प्रवान करनी सारिया दा, और मुखी सजना दा बार बार धन्यवाद। फुल चुकदी शमा, वाहेगुरु जी का खालसा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
3: Sahas kade lak uthtave, tript naave maya pacha paave, anak bhog vikhya ke karana triptave khap khap marae, bina santokh nahi ko rajae, supna manorth brithe sab kaajae. नाम रंग सर्ब सकोए बड़पाकी किसे प्राप्त होए, करन करावणे आपे आप सरासरा नानक हर जाप, करन करावण करने हार इसके हाथ कहां विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए, जो कुछ कीनो सो अपने रंग सबते दूर सब हुके संग, बुझे देखे करे बवेक आपे कापे अनेक, मरे न बिनसे आवे न जाए, नानक सद ही रहे समाए,

कहो कुछ होए थान थनंतरे कैसोए। अपने चलते आप करने हार कौत करे रंग या पार। मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वखियानी। सच सच सच सब कीना कोड मद किने बिरले चीना। भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरुण बखियानी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत। सलोक संत सरण जो जन परै सो जन उदरण हार। संत कि निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। अष्टपदी संत के दुखना यार जा घटा है। संत के दुखना जानते नहीं छुटा है। संत के सुख सब जाए संत के दुख नरक में पाए। संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन शोभा ते हीन। संत के हते को रखे न कोए संत के दुखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पीतर आए। संत के दुखन ते मुख पवै संतन के दुखन काग ज्यों लवै। संतन के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए। संतन के दुखन तृष्णा में जलै संत के दुखन सब कुछ हलै। संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीच नीच आए। संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावे तो ए भीगत पाहे। संत का नंदक महातताई संत का नंदक खंडक न पाई। संत का नंदक महात्यारा संत का नंदक परमेश्वर मारा। संत का नंदक राज तहीन संत का नंदक दुखी यार दीन। संत का नंदक सर्व रोग संत का नंदक सर्व जोग। संत की निंदा दुख मह दुख नानक संत भावित उसका पी हो मोख। संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित। संत के दुखी को डान लाग है संत के दुखी को सब त्याग है। संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बिकारी। संत का दुखी जन्म मरे संत के दुखना सुख ते टारे। संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत भावे तले मिलाए। संत का दुखी यद बीत टूटे संत का दुखी कित काज ना पहुंचे। संत का दुखी को ध्यान भरमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है। संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा। संत के दुखी की जड़ किस नाहे अपन भी जप ही खाए। संत के दुखी का वरन राखण हार नानक संत भावे तले उबार। संत का दुखी ओ बिल लाए जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजे जो पाव किंदा नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटे केला जो बुआर तिल खेत माहे दोहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत। कीर्तन का तुर ही पया नानक जो भावे सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत का दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी न मरे न जीवाई है। संत के दुखी की पूजे नासा संत का दुखी उठ चले निरासा। संत का दुख न त्रिष्ठा कोए जैसा भावे तैसा कोई होए। पया किरत न मेटा कोए नानक जाने सच्चा सोए। सब कर तिसके ओ करने हार सला सला तिसका नमस्कार। प्रभ की उस्तत करो दिन रात तिसे त्यावो सास ग्रास। सब कछ वरत तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार। जिसनो कृपा करे तसे अपन नाम दे बड़ भागी नानक जन से। सलोक तज हो।

आए अष्टपदी मानुख की टेक वृत्ति सब जान देवन को एक है भगवान जिसका दिए रहे अगाए बहुर न तृष्णा लग आए मारे रख है को आप मानुख सुनाई हाथ तिसका हुक्म भू सुख होए तिसका नाम रखंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन लागे कोए उस्तत मन में है कर निरंकार कर मन मेरे सद व्यवहार कर्मल रसना अमृत पियो सरा सुहेला कर लह जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग सार संग बिन से सब संग चरण चलो मार गोविंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म सरवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बड भागी माहे सरासरा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से तनवंत गणी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सरासरा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने ते उतकियो सोजी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक ते निरंजन जाने गुर प्रसाद अपने आप सूझै तिसकी जानो तृष्णा बूझै सार संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्योहार जन रहत आन दिन कीर्तन केवल बखियान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिए जम की फासा पार ब्रह्म के जिस मन भूख नानक तिसन लागे दुख जिसको हर प्रमाण चित आवे सो संत सोहेला नहीं डुलावे जिस प्रावे अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डराए जैसा सात ऐसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सिजिया गुर प्रसाद तर सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई अस्थूल न कि जन्म न किस मरे अपन चलता आप ही कराए आवन जावन दृष्टि अनदृष्टि आज्ञा कारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मह आप अनक जुगतराय थाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड धारण धार रहो ब्रह्मांड अलख अपे पुरख प्रताप आप ज पाए ते नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सो बावंत सगल संसार उदृत नमंत प्रभ के सेवक सगले उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे में ले कृपाल गुर का शब्द जपे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़भागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तन पुरख का उत्तम करमान जो कुछ करे सो प्रभ के रंग सरा सरा बसे हर संग सहज सुभाए होवे सो होए करने हर पछाने सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा साता सा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माहे समाए ओ सुख निधान हो मन आए

अष्टपदी टूटि गणर हार गोपाल सर्ब जिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिससे बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रव्यापे आप आपन किया कछु न होए जैसो प्राणी लोचा कोए जिसमें नाही तेरे किस काम गत नानक जापे कहर नाम रूपवंत हो नाही मोह है प्रभु की जोर सगल घट सो है तनवंता हो क्या को गर्भ है जा सबके तिसका दिया दरब है हत सूरा जे कहु कहावे प्रभु की कला बिना कहता है जे को हो बह दातार तिस देन हार जाने गावार जिस गुर प्रसाद उठे हो रोग नानक सो जन रोग ज्यो मंदिर को थामे थम्मण त्यो गुर का शब्द मने अस्थम्मण ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरे प्राणी गुर चल लगत निस्तराय ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए विगास ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बाचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिल लाइये प्रभु लिखे का लिखिया पाइये दोख सुख प्रभु देव नहार अवर त्याग तूत सहज तार जो कछ करे सोई सुख मान भूला काहे प्रे अजान कौन बसते आई तेरे संग लपट रे रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पर सेति घर जाहे जिस वखर को लैण तो आया राम नाम संतन घर पाया तज मान लिहो मन मोल राम नाम हृदय महतोल लाल खेव संत संग चाल अवर त्याग भिख्या जंजाल तन तन कह सब कोए मुख उजल हर दरगह सोए एहो वापार विरला वापार नानकता के सद बलहार चरण सार के तोए तोए पियो अर्प सार को अपना जियो साधकी धूर करो इशनान साधु पर जाइये कुर्बान सार सेवा वड भागी पाई है सार संग हर कीर्तन गाइये अनक बिघन ते साधु राख है हर गुण गाय अमृत रस चाख है ओट गई संत दरियाया सर्व सोग नानक ते पाया मृतक को जीवा लनहार भूखे को देवत आधार सर्व निधान जाके दृष्टि माहे प्रभु लखे का लेना पाहे सबके तिसका हो करने जोग तिसमें दूसर हो अनहोग जाप जान सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभु चीत भगत भगत सुनिए त्यो लोए जाके हृदय को होए सच करने सहायता की रहत सच हृदय सतमुख कहत साची दृष्ट।

अष्टपदी अविनाशी ही ब्राह्मण में राख मानुख की तो प्रीति त्याग तिस्ते परे नाही किस कोए सर्वनंतरे को सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गही सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शांद साध तेरे की चरणी पाओ नानके मन हवन राओ मनसा पूर्ण सलना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जा का नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अन द्रु मंगल सर जाके सर्व थोक सुनिए करता कह राज मह राज जोग मह जोगी तप मह तपीसर गृहस्थ मह भोगी त्याए त्याए भगत सुख पाया नानक तस पुरखा किने अंत न पाया जाकी लीला कीमत नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण में जाको परमाए जन मरे फिर आवे जाए नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे करंग नाना बिरकिनो विस्तार प्रभु अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूरह पूर्ण सब ठाए नाना मिल कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हरनाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरसन सरवण कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सोजन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समय समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत जन जाकर दे प्रवेश सत नृत बुझे जे कोए नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपने मित गत जिसके श्रेष्ठ सो करने हार अवर न बुझ करत विचार करते कि मित न जाने किया नानक जोत सभावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बुझिया तछाया स्वाद प्रभ के रंग राजन रहे गुर के वचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटनहार जाके संग तरे संसार जन का सेवक सोवड़ भागी जन के संग एक लिव लागी।

अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहारे, पूजा सत सत सेवदारे, दर्शन सत सत पेखनहारे, नाम सत सत ध्यावनहारे, आप सत सत सब धारी, आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जा संता, भोजन हार कौ सर सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत सरूप हृदय जन मानिया, करन करावण तिन मूल पछानिया, जाकर दे विश्वास प्रभ आया, तत गया तिस मन प्रगटाया, भय ते निरपो होए बसाना, जिस ते उपजत समाए समाना, बस्त महेले बस्त गडाई, तक भिन्न कह न जाई, बुझ बुझन हार विवेक, नारायण मिल नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सला पुजारी, ठाकुर का सेवक है मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर का सेवक जान संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक प्रपालन हारा, सेवक की रख निरंकार, सो सेवक जिस दया प्रभु धार, नानक सो सेवक सास सास मार, अपने जन का पर्दा ढाक, अपने सेवक की सर पर राख, अपने दास को देव डाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत राख, ताकि गत मित कोई न लाख, प्रभु के सेवक को न पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, कीरी मैं कर रख है, पसम करे लश्कर कोट लाख है, जिसका शासन काटते आप, ताको रख दे कर हाथ, मानस जतन करत भात, तिसके करत बिरथे जात, मारे न राख है, अवर न कोए, सर्व जिया का राखा सोए,

अष्टपदी सतगुर सिखी करे प्रतपाल सेवको गुर सदा दयाल सिखी गुर दुरमत मल हिरै गुर वचनी हर नाम उचिरै सतगुर सिख बंधन कट है गुर का सिख बेकार ते हट है सतगुर सिख नाम धन दे गुर का सिख वडभागी है सतगुर सिख हलत पलत सवार है नानक सतगुर सिखो जी नाल समार है गुर का गृह सेवक जो रह गुर की आग्या मन में सह आपस कहो कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्य आवे मन बेचै सतगुर के पास ते सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए निकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस विश्व गुर का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता अठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जान जन मह पार ब्रह्म एक है अपने गश परम सह सियानप लया न जाइय नानक ऐसा गुर बडभागी पाईय सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे सुनकर वचन करने आगाने मन संतोख आत्म पति याने पूरा गोरे अखे हो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावित सलय मिलाए जेह बा एक उस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहु बोल पहुंचत प्राणी अगाम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहा निरवै सुखदाई ताकि कीमत किन्ना पाई अनक भगत बंधन नित कर चरण कमल हृदय सिमरह सद बलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हरस पावे जन कोए अमृत पीवे अमृत होए उस पुरख का नाही कदे बिनास जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक मोह माया के संग न लेप मन में राखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम दुख तहते नासे तपत माए ठाड वरताई अनंद भया दुख नाठे भाई जन मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पौ चुका निरपो है बसे सगल बिहार मन ते खै नसे जिसका साथ इन कृपा धारी सार संग जप नाम रारी थित के भ्रम गवन सो नानक हर हर जसरवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाई अपनी कीमत आपे पाई हर बिन दो जाना ही कोय सरवण तरे को सोए ओत पोत रवि रूप रंग भय प्रगा सार के संग

हार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हारे आपे का विस्तार जात सुभावे ता सृष्टि उपाय अपने भाने लय समाये तुम ते भिन्न नहीं किस होए अपन सूर सब जगत परोए जाको प्राप जीवा बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् कबेता नानक सगल सृष्टि का जेता जी अजंतर सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राख है तिसको न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस्ता जबर कहा को जाए सब सिरे निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ।

अथ अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत न पाई मानुहा नाम तेरा संग सहाई जह महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरा चलै जह मुश्किल होवै अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहि तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव हो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत है सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत अगावै जेहे मार्ग हो जात अकेला त हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा ध्याई नानक गुरमुख परम गत पाईऐ छूटत नहीं कोट लख वाही नाम जपत पार पराही अनक बिगन जह आए संघार है हर का नाम तत्काल उधार है अनक जोन जन्मे मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हौ मैला मलक बुन धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाईए साध के संग जेह मार के गणे जाहे न कोसा हर का नाम मुहा संगतोसा जेह पैंड है महंत गुबारा हर का नाम संगू जियारा जहां पंत तरा को न सियानू हर का नाम तह नाल पछानू जह महा भयान तपत बहु काम तह हर के नाम के तुम उपर श्याम जहा त्रिखा मन तुझिया करख है तह नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बरतन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम दिलजन कोट हर जस करत संदन रात हर हर अखर सार के मात हर जन के हर नाम निदान पार रमजन की नदान मनता रंग रते रंग एक नानक जन कै बिरत विवेक हर का नाम जन का मुक्त जुगत हर के नाम जन का तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परिण भंग हर का नाम जन की वड्याई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन का भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को हुआ प्रभ दीना हर हर जन के ओर सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर असराते सुन समाध नाम रसमाते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगटन छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेत तरे पार जात हर को नाम काम तिन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर दुख लथा नाम की महिमा संत दिवसै संत प्रताप दुरत सब नसै संत का संग वड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तो

अष्टपदी रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिंतु साहि सवार सिंगारिया गर्भगण मैं जने उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध भार जोबन भोजन सुख सूद बिरद पयाऊ प्रसाग सैन मुख अपयाऊ बैठको दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लिहो तो नानक सीजै जे प्रसाद धारू पर सुख बस है सुत भरात मीत बनता संग हस है जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमला जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समगरी संग साध बसा दीने हस्त पाव करने तरसना तिसे त्याग वर संग रचना ऐसे दुख मूढ़ ब्यापे नानक काट लिहो प्रभापे आदि अंत जो राखन हार तिसे प्रीत न करे गवार जा किसी वह नवनिद पावे तासे मूढ़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर ससरा हजूरे ताको अंदा जान दूरे जाकी टहल पावे दरगह मान तिसे बिसारे मुक दे जान सदा सदा हो भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मान जो होवन सो दूर प्राण छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारे तोये गर्द प्रीत भसम संग होए अंध को मैं पत्र बिकराल नानक काट लियो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया छपस नह कश करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसे तरे अथाह जाके अंतर बसे प्रव्याप नानक तेजन साय समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गह लिहोड़ निभावे कहां बुझारत बुझे डोरा नस्कहिये तो समझे पोरा कहां बिसन पर गावे गोंग जतन करे तो पीसर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तुहा उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरह संग सहाय स्वाविन जो बहराई ता सुप्रीत बलुआ के ग्रह पीतर वसै अनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मान मन प्रतीत काल न आवे मुड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पहे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा हम सुख नेरे कोई न जाने तुम राय अंत उचे ते उचा भगवंत सगल

अचरज कथा अष्टपदी सार के संग मुख उजल होत सार संबल सगली खोत सार के संग मिटे अभिमान सार के संग प्रगटे सो ज्ञान सार के संग बुझे प्रभ नेरा सार संग सब होत नवेरा सार के संग पाए नाम रतन सार के संग एक ऊपर जतन सार की महिमा बरने कौन प्राणी नानक सार की शोभा परमा है समानी सार के संग या गोचर मिला सार के संग सरा पर फुल संग आवे बस पंचा सार संग अमृत रस पुंचा सार संग हो सब की रेन सार के संग मनोहर बैन सार के संग न कत हुतावे सार संग अस्त मन पावे सार के संग माया ते भिन्न सार संग नानक प्रभ सो प्रसन्न सार संग दुश्मन समीत साधु के संग महापुनीत सार संग किस्यो नहीं बैर सार के संग न बिंगा पैर सार के संग नाही को मंदा सार संग जाने परमानंदा सार के संग नाही हो ताप सार के संग तजे सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने सार के संग न कब हुतावे सार के संग सदा सुख पावे सार संग बस त्याग चल रहा है साधु के संग जरसा है सार के संग बस है थान ऊंचा है साधु के संग महल पहुंचा है सार के संग दृढ़ सब धर्म सार के संग केवल पार ब्रह्म सार के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान सार के संग सब को उधार है सार संग साजन मीत कुटाम निस्तार है साधु कै संग सो धन पावे जिस धनते सब को बरसावे सार संग धर्म राय करे सेवा सार के संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन सार संग अमृत गुण गायन सार के संग सर्ब थान गम नानक सार के संग सफल जनम सार के संग नहीं कशकाल दर्शन भेट तो होत निहाल सार के संग कलूखत हरय सार के संग नरक पर हरय सार के संग इहा उहा सोहेला सार संग बिशरतर मेला जो इच्छा सोई फल पावे सार के संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साधृत बसाय नानक उदरे सार सुन रसाय सार के संग सुनो हर नाओ सार संग हर के गुण गाओ सार के संग न मनते बिसरा सार संग सर पर निस्तर है सार के संग लगे ब्रह्म मीठा साधु के संग घट का डीठा साध संग पह आज्ञाकारी सार संगत पही हमारी सार के संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग सार की महिमा भेद ना जाना है जेता सुने तेता बख्याना है सार की उपमा त्यो गुण ते दूर सार की उपमा रही भरपूर सार की शोभा का नाही अंत सार की शोभा सदा भी अंत सार की शोभा ऊंच ते ऊंची सार की शोभा मूच ते मूची सार की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक मन साचा।

अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख सर्व को सुख। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक जो बसदा को खोद को चन लेप। ब्रह्म ज्ञानी कहे है गुनाओ नानक जो पाव कसाय सुभाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन हो प्रगास जैसे तारी उपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उचते ऊंचा माने अपने हिसाब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जन प्रव्याप करे। सगल कीरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी के सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सरा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी ही बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी ही एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी के हो सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह के रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रसंग। ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ज्ञानी के नाम प्रभार। ब्रह्म ज्ञानी सरासर जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी के हो अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्मर ब्रह्म ज्ञानी किमित कौन बखाना ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सरा नमस्कार। सब सृष्टि का कर्ता सर जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा

नाम सर्व मैं पेख भगवान नानक ठाकुर नमस्कार नानक हो परस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रेया रूप न पेखा नेत्र सार की टहल सनसंग हेत करन सुन काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद बिखिया पर हरे मन की वासना मन ते टरे इंद्रिय जित पंज दोख ते रहत कोट मदे को ऐसा अपरस बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत होवे ने कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा ने बाछै केवल भगत कीर्तन संग राचै मन तन अंतर सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानको बैसनो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मन ते बिनस सगला भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सार संग पापा मलख होवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन निरपय बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबोध है राम नाम सोद राम नाम सारस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद प्राण समर्थ बुझे मूल सुख में जाने स्थूल चहो वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देस बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहो वरना में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए सार संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उतार पश प्रेत मुक्त पात्र को तार सर्वरो कयोखत नाम कल्याण रू मंगल गुण गाम काहू जुगत कितना पाइये धर्म नानक तिसमिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मान पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास संतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह प्रवान अपने दास को अब कृपा करे तिस दास को सब सोजी पराए सगल सांग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभ की आज्ञातम हितावे जीवन मुक्त सोग कहावे तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद तय नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत ऐसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जिर जित का राखे तैसा तिन नाओ आप ही कर्ण क्रावण जोग प्रभावे सोई फुन होग पसरे आप होय नत्रांग लखन जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी माता

एक है दूसर नाही कोय, नानक तिस बल हारण जल थल महियल सोए। अष्टपदी करन करावन करन जोग, जो तिस भावे सोई होग। खिन में थाप उथापन हर अंत नहीं किस पा, हुक्मे धारे या धर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे। हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनकरंग प्रकार, कर कर देख है अपनी वडियाई, नानक सब में रहिया समाई। प्रभ पावे मानुख कत पावे, प्रभ पावे ता पाथर त्रावे। प्रभ पावे बिन शास्त्र राख है, प्रभ पावे ता हर गुण पाख है। प्रभ पावे ता पतत उधार है, आप करे अपन विचार है। दोहा सिरिया का आप स्वामी, खेले बिकसे अंतर जामी। जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे। कहो मानुख ते क्या हो आवे, जो दस पावे सोई करावे। इसके हाथ हुए ता सब किस ले, जो दस पावे सोई करे। अनजानत बिखे जे जानत अपने आ बचै, पर मैं भूला दह दस्तावे। निमुख मैं चार कुंट फिर आवे, कर कृपा जिसे अपनी भगत दे, नानक ते जन्ना मिले। खिन मैं नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। जाका दृष्ट कछु न आवे, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावे। जाको अपनी करे बख्शीस, ताका लेखा न गणे जगदीश। जियो पिंड सब तस्की रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बनते आ बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई। इसका बाल नाही इस हाथ, करन करावन सर्व को नाथ। आज्ञाकारी ही बपरा जियो, जो दस पावे सोई फुन थियो। कबू ऊच नीच में बसे, कबू सोग हर खरंग हसै। कबू निंद चिंद व्यवहार, कबू बकाश पयाल। कबू बेता ब्रह्म विचार, नानक्या मिलावन हार। कबू नृत्य करे भपात, कबू सोए रह दिन रात। कबू महा क्रोध विकराल, कबू सर्ब की हो तरवाल। कबू हो बह बड़ राजा, कबू भिखारी नीच का साजा। कबू अब कीर्त में आवे, कबू भला भला कहावे। जो प्रभ राख तभी ही रह, गुरप्रसाद नानक सच कह। कबू है पंडित करे बखियान, कबू मोन धारी लावे ध्यान। कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिर सर्ग मु ज्ञान। कबहू कीट हस्त पतंग हो जिया, अनक जोन पर मह परमिया। नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभावे तिवे नचावे। जो तिस भावे सोई होए, नानक दूजा वर न कोए। कबहू सार संग तिहो पावे, स्थान ते बहर न आवे। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। नाम रते करांग, सदा बसह पार ब्रह्म के सांग।

जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जानै मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे भजन प्रमावे। भूंगा जो करे गुमान सो मूर्खंदा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानकी है मुक्ति आगे सुख पावे। धनवंता हो कर गरबावे तृण समान का संग न जावे। बहु लश्कर मनुख उपर करे आस पल पीतरता का हुए बिनास। सब ते आप जाने बलवंत खिन में हुए जय पसमंत। किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तस्करे खुआरी। गुर प्रसाद जा का मिटिया अभिमान सो जा नानक दरगाह प्रवान। कोट कर्म करे हो तारे शर्म पावे सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार। अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवे हर दरगे को कैसे गवे। आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे। सर्व किरेन जा का मन होए कहो नानक ताके निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कस होए तब इस को सुख नाही कोए। जब ही जाने मैं किस करता तबला गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग ने चलना ही चीत। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूट है गुर प्रसाद नानक हो छूट है। सहस कटे लख कोठता तृप्तनावे माया पाछे पावे। अनक भोग बिखिया के करै नह तृप्तावे खप खप मरै। बिना संतोख नहीं को राजा सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसे प्राप्त होए। करन करावने आपे आप सरासरा नानक हर जाप। करन करावन करने हार इसके हाथ कहां विचार। जैसी दृश्य करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए। जो किसकीनो सो अपने रंग सब का संग। बुझा देख करे विवेक आपे कापे अनेक। मरे न बिन सहे अब न जाए नानक सद ही रहया समाए। आप उपदेश है समझे आप या फिर सबके साथ। आप किनो अपन विस्तार सब कछ उसका हो करने हार। उसते पिन कहो किश होए थान थलंतर अपने चलत आप करने हार। कौत करे रंग या पार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किन्ने वख्यानी। सच सच सच सब कीना कोट मदे किन्ने बिरले चीना। भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरण वखिया।

अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सर सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सर ध्यावनहार आप सत सर सब धारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस संता बुजनहार क सर सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जन मानिया करन कराम पछानिया जाकर दे विश्वास प्रभाया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरपो होए बसाना जिस ते उपजत समाय समाना बस्त महले बस्त गडाई ताको भेनण कह न जाई बुझे बुझनहार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सला पुजारी ठाकुर का सेवक मन प्रतीत ठाकुर के सेवक इंद्रमल रीत ठाकुर का सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक प्रपालन हारा सेवक की राखे निरंकार सो सेवक जिस दया प्रवतार है नानक सो सेवक सास सास मार है अपने जन का परदा ढक है अपने सेवक सर पर राख है अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखे ताकि गत में कोई न लख है के सेवक को न पहुंचा है प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया नेकी कीरे मैं का रख है पसम करे लश्कर कोट लख है जिसका सास न काटते आप ताको रख दे कर हाथ मानस जतन कर्तव्य पात तिसके करते बिरथे जात मारे न रख है अवर न कोय सर्व जिया का रखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ लख वडाणी बारंबार बार प्रभु जपिए पी अमृत मन तंत्र पिए नाम रतंजन गुरमुख पाया तिसके शवर नाही दृष्ट आया नाम धन नाम रूप रंग नाम सुखर नाम का संग नाम रस जो जंत्र बताने मन तन्ना मह नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन के सदकाम बोलो जस जेवा दिन रात प्रभु अपने जन किन्नी दात करे भगत आत्म कच्चाए प्रभु अपने सोरह समाए जो होवा होवर सो जाने प्रभु अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे कना आठ पैर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तन की ओट लेहे मन तने अपना तिन जन देहे जिन जने अपना प्रभु पछाता सोजन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे सपा मिटाव है अवर स्यानप सगले शाड तिस जन की तो सेवा लाग आवन

तिसकै संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल, सेवको गुरसला दयाल। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन कट है, गुर का सिख विकार ते हट है। को नाम धन दे, गुर का सिख वड भागी है। सतगुर सिख का हलत पलत सवार है, नानक सतगुर सिख को जी नाल समार है। गुर का गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह। आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे। मन बेचा है सतगुर के पास, ते सेवक के कार्य रास। सेवा करत हो कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिसे आव करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बेस बिस्व गुर का मन मान, सो सेवक परमेश्वर की गत जान। सो सतगुर जिस हृदय हर नाव, अनक बार गुर को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म जान जान एक है आप, नहीं कछ परम। सह सियानप लै न जाइये, नानक ऐसा गुरबट भागी पाइये। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसद चरणगत निर्मल रीत। भेट संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुनकर बचन कर न्यागाने, मन संतोख आत्म पति जाने। पूरा गुर आखे हो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हो संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावित सलय मिलाए। जे बा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक। काहु बोल पहुंचत प्राणी, अगम गोचर ब्रह्म निर्वाणी। निराह निर्वय सुखदाई, ताकि कीमत कर न पाई। अनक भगत बंधन नित कर है, चरण कमल हृदय सिमर है। सद बलहारी सतगुरु अपने, नानक सा प्रभु जपने। एहो रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमृत सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास। आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवको दे। मोह माया के संग न लेप, मन में राखे हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरम मोह दुख तहते नासे। तप्त माए ठाड़ वरताई, अनंद भया दुख नाठे भाई। जन मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पौ चुका निरपौ हो बसे, सगल बिहार मन ते खाय नसे। जिसका सा तिन कृपा धारी, सर संग जप नाम मुरारी। थित पाई चुके भ्रम गवन, सो नानक हर हर जस सरवण। निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कला धारजन सगली मोही। अपने चरित प्रव्या बनाए, अपनी कीमत आपे पाई। हर बिन दूजा नाही कोय, सरवण अंतर एको सोए। ओत पोत रवि रूप रंग, भय प्रगास हर के संग।

अष्टपदी जब अकार हो कशन दृष्टेता पापन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाध तब बैर के साथ जब इसका वर्ण चेहना जापत तब हरसो को किसे व्यापत जब अपन आप आपार ब्रह्म तब मोह कह किसोवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभु केवल तनी तब बंद मूत को किसको गनी जब एक हरा गम अपार तब नरक सुर का कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु साय सुभाए तब शिव सकत कह कत ठाए जब आप है आप अपनी ज्योत रह तब कवन डार कवन कत डराए आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभु एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप ही चर्जा नानके अपन रूप आप ही उपरजा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तो जह निरंजन निरंकार निर्माण तह कौन को मान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत कौकीस जह जो स्वरूपी जोर संग समावे तह किसे भूकंप त्रिपतावे करण करावण करने हार नानक करते कना है समार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जह सर्व कला पे प्रवीण तह वेद कदेव कहा कौचीन जब अपन आप उतार है तो सगने आप सगन कहा विचार है जहे अपनी ऊंचे अपने आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्मर है बिस्माद नानक अपनी गत जान हो आप जहे अशल अशेदा भेर समाया ऊहा किसे व्याप्त माया आप सको आप आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश जह एका एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जह अपने आप आपति आरा तह कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत उचते ऊंचा नानक आपस को आपे पहुंचा जह आप रचो प्रपंच आकार त्यो गुण में किन्नो विस्तार पाप पुन तह पही कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल हम मोह परम पै पार दोख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखयान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक कह जह अवगत भगत है आप जह पसरे पासार संत प्रताप दोह पा कापे तनी उनकी सुबान हो बनी आपे कौत करे अनद चोज आपे रस भोग निर्जोग जिस भावे तिसे अपन नाए लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे।

अष्टपदी पूरे गुरु का सुनोपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर के आस अनित त्याग त्रंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सार संग अगन सागर तरहो हर धन के पार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सार संग भज परमानंद नरक निवार उधारो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितव नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का हे आधार उत्तम श्लोक सादके बचन अमलीक लाल रतन सुनत कमावत होते उधार आप त्रैलोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लगा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजे सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय प्रगट है गोपाल महाद के माथे नानक कुदरतन के साथे सरण योग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभु मिलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम सार संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हो सेव की सेव आल जंजाल विकारते रहते राम नाम सुनसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक ने बेखेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुख मने सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो तन दान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बोर न होवे आवन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांत रिद नाम निद बुद्ध ज्ञान सर्व त सिद्ध विद्या ताप जोग प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मर सगल ते उदास सुंदर चतर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल

0: मन अंधा नाउ सुजान पौड़ी।
1: साहिब फैदे आल कृपा कृतां साई कर कराए सी, सो सेवक सेवा कर जनो हुकम लाए सी, हुकम मन्या होवे तवां तक समय का बहन पाए सी, समय पावे सो करे मन चंदिया सो बढ़ पाए सी।

परम तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखण हार दयाल नानक करके गोले जब लो नहीं पाग लिलारी उदय तब लो परमते फिरते बहुत आयो कल कोर समुन्द्र में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पुछतायो तत् विचार जह मथुरा जग तारन कौ अवतार बनायो जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नायो ज्ञान ध्यान किशकर्म न जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत का अंचल लाभ लिखम नदी जय तरनी हम अवगण भरे एक गुण नाही अमृत शाड बिख बिख खाई एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे

दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसामली नूर अरसह कुरसह चटिया सच्ची पातशाह।

0: वाहे गुरु जी की फतेह।
1: गुरु प्यारे, गुरु सवारी, सात संगत जी, आप जी ने बड़े प्रेम नाल सतगुरां दी हजूरी दा आनंद माणदिआं आसा की वार दे कीर्तन सरवण कीते। सेवा निभारे सन भाई नवदीप सिंह जी, उपरंत अरदास अते मुख वाक दी सेवा सिंह साहिब ज्ञानी गुरचरण सिंह जी हजूरी अरदासी श्री दरबार साहिब उन्हां पासों बड़े प्रेम नाल सरवण कीते। गुरमुख जना दा समूह संगत

हो सकती है। चंदन बड़ा कीमती है, कुछ फूल बड़े कीमती ने, केसर बड़ा कीमती है, ऐसे वनस्पति कुछ पशु भी बड़े महान ने, गऊ है, हाथी है, घोड़ा है, मोर है, हंस है। इस वास्ते कोई बड़ा पवित्र हो तो कह देने ऐसे हंस वर्ग है, कोई बड़ा शरीफ से भले मानस हो वैसे ही कहने निरी गऊ है, निरी गऊ है। बड़ा बहादुर हो तो इसी कह देना निरा शेर है, तो शेर देना है, शेर है। जिंदगी विच कोई कीमत उसने प्राप्त कर ली है, कोई रब्बी रस मिल गया कहने ते हीरे वर्ग है, निरा हीरा तस्बीहां ते देंदे। पत्थर चमक जाए ते मनुख दे अंदर चमक ना पैदा होवे तो फिर पत्थर मनुख नाल अगे। वनस्पति देच महक आ जाए ते कोमलता आ जाए ते मनुख देच कोमलता ना आवे ते महक ना आवे तो ये वनस्पति नालों पछड़े होया। पशुआं देच दलेरी भी आ जाए, शराफत भी आ जाए, भले मानसी भी आ जाए, ज्ञान भी आ जाए ते मनुख देच ना आवे तो ये नालों पशु चंगे ने, कुछ पशु चंगे ने, ये भी महर्ज कर दें। मनुख होके चमक नहीं आई, पत्थर चमक गए, पत्थर चमक पैदा हो गई। मनुख होके हृदय चानना नहीं आया, पत्थर चमक गए ने, हीरे चमक जाते ने। कोहो नूर हीरा जिहड़ा इंग्लैंड दे पिया उहदे ते रोशनी ऐ ते हीरा। खैर मुक्तसर मैं अर्ज करा, मन जिस दिन पूरा जाग जाए तो हीरे की ने ते गऊ की है, चंदन की है, मनुख का मन परमात्मा हो जाता है, ईश्वर हो जाता है। बिगड़े हो कबीरा राम दुआई, साच भयो अन कदे न जाए, नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। हुण मैं अर्ज करा, जितना मन किसी का जागया इंसानियत उस दे च उतनी है, उस तो ज्यादा नहीं है। जिड़ा अचेत भाग मन दा है वो पशु होवेगा, वनस्पति होवेगा, पत्थर होवेगा। बड़ा कठोर व्यवहार है, बड़े सख्त बोलने, दिल बड़ा पत्थर है। अजे पत्थरों के संस्कार बड़े प्रबल ने, थोड़ा जिया जागा बाकी सुता पे जिमें पत्थर सुता होया। पत्थर पूर्ण सुता होया, परमात्मा पूरा जागया होया। सुते दी यात्रा है जागे, प्रकृति पत्थर नू थोड़ा जगांदी है वनस्पति दे रूप च, होर थोड़ा जगांदी है पशु पक्षियां दे रूप च, ते प्रकृति जगांदी है पशु पक्षियां नू मनुख दे रूप च, ते मनुख नू खुला छोड़ देता है हुण तू आप जाग। मेहनत कर, यतन कर, क्यों हर चे जूद बरायद देर ना पाया। जिहड़ी चीज छेती मिल जाए, बिना मेहनत दे मिल जाए, मनुख कदर नहीं करता, नहीं करता। प्रभु दा नियम ए मेहनत करे, जिन्नी नाम दे आया गए मुशक्कत घाल, गालना गाले, गालना घाल गाल के कुछ मिले, कुछ प्राप्त होवे। कारण मैं फिर अर्ज करा, जिहड़ी चीज मुफत दे च मिल जाए, बिना मेहनत दे मिल जाए, मनुख कदर नहीं करता होती। तो प्रभु का यह नियम परमात्मा ने खुला छोड़ देता है मनुख ने। मनुख चौराहे ते खड़ा है, अगर अग्गे चला गया तो परमात्मा बनेगा, पछड़ गया तो यह पशु बनेगा। शरीर का अंत होया तो अजे जन्म नहीं होया, सज्जे चला गया तो देव बनेगा, एक पवित्र रूह भटकती रहेगी। खब्बे गया तो एक मलीन रूह है, इनू भूत प्रेत कहते हैं, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाज। सुखमनी साहब, छे अरब के करीब इस वक्त जमीन के उत्ते मनुख ने, तो इतनिया ते रूहां समझ लेनिया चाहिए ब्रह्मंड दे च हैं। चंगियां नू देव कहते हैं, माड़ियां नू भूत प्रेत कहते हैं। और धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी इसका जिक्र कर दें, कहूं जच गंधर्व उरग, कहूं विद्याधर, कहूं भय किनर पिसाच, कहूं प्रेत पिसाच, भूत प्रेत पिसाच। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज
कई कोट भूत प्रेत सूकर।

0: टेस्टी जी सब्जी भले खाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: तुहाडा घर तुहाडी सब तो वड्डी इन्वेस्टमेंट तुहाडा सब तो वड्डा एसेट हुंदा है।
5: इसनु खरीदन जा वेचन लई तुहानू चाहिदा है एक अजेहा रियल्टर जो तुहाडे लई काम करे, जिस ते तुसी भरोसा कर सको, जो तजर्बेकार होवे। अजेहे ही एक रियल्टर हन गुरदयाल सिंह बाद, जो अपने 35 सालां तो वध्दे तजर्बे नाल रीमैक्स दे टॉप प्रोड्यूसिंग रियल्टर्स विच शामिल हन।
4: मार्केट दी पूरी समझ अते तुहाडे भरोसे ते पूरे उतरणगे। गुरदयाल सिंह बाद
5: तो हर तरह दी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फार्म अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी संबंधी सही सलाह अज ही गुरदयाल सिंह बाद नू
4: 604-351-5111 ते कॉल करो। 604-351-5111 गुरदयाल सिंह बाद।

रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। मनुख रोग है और ए रोग दो हिस्सों विच प्रगट होंदा है, तन दे तल ते रोग बन के, मन दे तल ते सोग बन के। तो क्या जीवन भर रोग ते सोग विच जीवना ही मनुख दी प्रालब्ध है, मनुख दा भविष्य? यही मनुख है, रोग विच जीवे, सोग विच जीवे, चिंतावां ते इतनी पीड़ा ने, इतना बोझ है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिता है, गिरंत गिर पतित पातालं जलंत दे दी बैसांतरे। कोई मनुख बहुत पहाड़ दी उच्ची चोटी तो गिर रहा है, हजारा फुट दी बुलंदी तो थले गिर रहा है। गिरंत गिर पतित पातालं जलंत दे दीप बैसांतरे। ज्वालामुखी अग विच गिर जाए और कोई जिंदा जल रहा है। बहंत अगा तोयंग तरंगं अथाह सागर दियां लहरां विच गोते खा रहे होवे, डुब रहे होवे। बड़ी बुलंदी तो गिर रहे होवे, ज्वालामुखी अग विच जल रहे होवे, डुब रहे होवे। इस नाल जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, बहंत अगा तोयंग तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जनमंत मरण। घरेलू चिंता, जगत दी चिंता, परिवार दी चिंता, आर्थिक चिंता, ये ऐसी है महाराज कहने जैसे कोई पहाड़ दी बुलंदी तो गिर रहा हो, ज्वालामुखी अग विच जल रहा हो, या फिर अथाह सागर दियां लहरां विच डुब रहा हो। इंज कह रहो मनुख दा पतन हर वक्त हो रहा है, हर वक्त गिर रहा है। कहिंदे ने यात्रा ते चढ़ाइयां दे चौंदी है, निवाण विच ते पतन है, गिरावट। पानी निवाण विच जा रहे स्वास्थ्य कहने आ गिर रहा है, गिर रहा है। जिंदगी निवाण दी तरफ जा रही है, यात्रा ते ओ होंदी है जब चढ़ाइयां दी होवे। जब कोई चढ़दा है एक औघट घाटी राम की, ते चढ़ रहे हो कबीर। किसे हद तक मनुख दी जीवन शक्ति निवाण दी तरफ जावे काम बनती है, जीवन शक्ति ऊंचाइयां दी तरफ जावे राम बनती है। राम रस ते काम रस इंज कह लो बुलंदी ते निवाण है, निवाण है, निवाण है। इस पतन दी थोड़ी जिया देर लई ते लोड़ है, ताकि ख्याल आ जाए चढ़ाइयां ते चढ़ना। जद शक्ति निवाण दी तरफ जांदी है, जानी चाहिए कुछ देर लई संतान नू जन्म देंदी है। जद यही शक्ति चढ़ाइयां दी तरफ जांदी है तो भगवान नू जन्म देंदी है। मनुख है जो संतान नू भी जन्म देंदा है, भगवान नू भी जन्म दे सकदा है। संतान नू जन्म देण दे ते पशु भी समर्थ होए ने, कीड़े मकोड़े भी समर्थ होए ने। संतान नू जन्म देण दे करीबन करीबन सारे मनुख भी समर्थ हो जांदे ने। जीवन ते उस दिन सफल होंदा है जद कोई भगवान नू जन्म देंदा है। और भगवान नू जन्म देना की होंदा है, उस स्वयं भगवान मई हो जांदा है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पछाने। उन इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, अगर जीवन रोग है ते मन सोग है, तन रोग है, तो फिर की करिए? रोग दिच जीवी है, सोग दिच जीवी है, इस तो छुटकारा हो सकता है। बस धार्मिक ज्ञान ते जगत दे ज्ञान विच यही अंतर है।
ਫਰਾਇਡ ਜੈਸਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਲੋਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਲੋਭ ਇਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾਵੇਗਾ, ਕਾਮ ਵੀ ਇਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਬਹੁਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੇ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜੇ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜੇ ਤੜਪ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਲ ਟੋਲ ਕੇ, ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ, ਧਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਪਦਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਧੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 60% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਬਸ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਦੁੱਖ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰੋਗ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕਈ ਸਵਾਸਥ ਸਰੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਅਗਰ ਸਵਾਸਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਢਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬੀਜ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਵਸਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਔਸਧੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਗ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਢੇਪਾ ਸਵੈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੇ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਬਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਭਜਲੇ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਬੁਢੇਪਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਚਲੀਏ ਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸਤਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ? ਜਵਾਨ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਸਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਢਾ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਢੇਪਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ।
धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने नानक बद्धा घर तहां जिथे मिर्त न जन्म जरा। असी हुण अपना घर उथे बनाया जिथे जमना कोई नहीं, मरना कोई नहीं, बुढ़ेपा कोई नहीं। जन्म है तो दुख है, जीवन है तो दुख है और मरण है तो दुख है। तो प्रश्न खड़ा हुंदा है, जीवन दे होंदे होया जीवन तो छुटकारा किवें मिले, मौत दे होंदे होया मौत तो किवें बचीए, और जन्म हो गया है इनू भुलाइए किस तरह, किवें भुलाइए, इना रोगां तो और में छुटकारा होवे। प्रथम चिंता तो किवें बचीए। गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक श्लोक बड़ा कीम, जिन भोग समय अखंड पाठ साहब का जद या खुले पाठ का जद भोग पैंदा है, श्लोकां दी बाणी चलदी है। इस श्लोक दे आमदियां सारे ही बड़े उत्साह नाल उमंग नाल पढ़दे ने, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मारग संसार को नानक फिर नहीं कोए। पर जिन्ना अर्थां विच जगत इस नूं पढ़दा है ये अर्थ नहीं है। अज तक जिन्ना अर्थां दे जिस नूं पढ़िया जा रहा है ये अर्थ नहीं है। मनुख इस दे अर्थ करदा है, अनहोनी घटना घटे ते चिंता कर, भाव मौत हो गई है, अनहोनी हो गई है। कोई जवान जद बुढ़ा हो जांदा है कहिंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। बीमारी चरम सीमा ते जद कोई पहुंच जांदी है तो कह देंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। काटा पै गया, दिवालिया हो गया, कहिंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। उस दी कर जो अनहोनी आउंदी है। श्लोक दे ए अर्थ कीते जांदे ने ए अर्थ नहीं ने। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, विश्राम नाल पढ़ना पवेगा। प्रथम ये देखना पेगा चिंता किस गल दी है। चिंता दे कारण दो ने, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिदा, ये मनुख दी चाहत है। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिदा, पड़ोसी नाल होया होवे पे मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिदा, पर अंदर चिंता बनी हुई है किधरे हो ना जाए, किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा, ऐसा होना ही चाहिदा है, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी तलब है, मेरी चाहत है, मेरी ख्वाहिश है, ऐसा होना ही चाहिदा है, पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, मता ना होवे। चिंता दे ए दो कारण है, ऐसा नहीं होना चाहिदा, मैं नहीं चाहता, ऐसा होना ही चाहिदा है, मैं चाहना। पहले इस गल दे चिंता है किधरे हो ना जावे, जो मैं नहीं चाहता किधरे हो ना जावे, और जो मैं चाहना ऐसा ना होवे किधरे ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते हैं चिंता नो एक पासे रख, जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। चिंता नो परे सुट, जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा वह नहीं होंदा। अगर एक बुढ़ा आखे कि मैं मासूम बच्चे की तरह हो जावा, यह नहीं होंदा, यह नहीं होंदा। और एक जवान ए आखे कि मैं कदी बुढ़ा ना हुआ, ए नहीं होंदा, ए नहीं होंदा। एक बुढ़ा ए आखे मैं कदी नहीं मरा, ए नहीं होंदा, ए नहीं होंदा। जो होंदा है वो होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। जन्म हो गया होना सी, मरण हो गया होना सी, नफा हो गया होना सी, नुकसान हो गया होना सी, कबूल कर दिया ही। मनुख जन्म जीवन ते मरण दी पीड़ा तो बाला तर हो जाता है, पर किवें होवे, इहदी साधना की कीती जाए, किस तरह कीती जाए। क्योंकि गल इतनी चल रही है और धन गुरु नानक देव जी महाराज नो विश्व भर ने जिस आवाज नाल पुकारिया सी, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा, तो रोग जन्म है, रोग जीवन है, रोग मरण है, किवें छुटकारा होवे। गुरु नानक किस ढंग नाल इलाज करदे सन, किवें इलाज करदे सन। प्रथम देखना पएगा
कि मनुख जिथे भी बैठा है, परिवार विच बैठा है, बाजार विच बैठा है, या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे विच बैठा है, कारोबार विच बैठा है या वेला बैठा है, बैठा है बहुत काल दियां यादां विच, बैठा है भविष्य की चिंता विच। ये दो बोझ इस दे दिमाग ते पए ने। मनुख हमेशा भविष्य विच जीवदा है, मनुख हमेशा भूत काल विच जीवदा है। कहिंदे ने तन नूं भज्जण दौड़न लई अस्थान चाहिदा है, जगह ही ना होवे खुली तो तन भज दौड़ नहीं सकदा, ते मन नूं भज्जण दौड़न वास्ते समा चाहिदा है। मन दी भज दौड़ समय विच आउंदी है, अस्थान विच नहीं आउंदी। अस्थान विच दौड़दा है तन, समय विच दौड़दा है मन। अगर जगह ही नहीं, अस्थान नहीं, तो तन एक जगह बैठ जाएगा, अगर समय ही खो जाए तो मन मिट जाएगा, मन टिक जाएगा। सारी दुनिया विच एक गल ते पकड़ विच आ गई है, सुख उदों बनदा है, आनंद उदों बनदा है जिथे मन किसी संगीत दी धुन विच, किसी नृत्यकार दी कला विच, किसी साज दे वादन विच, आवाज विच, मधुर ध्वनि विच वक्ती तौर ते मन टिक जाए, रस्ते बन जांदा है, आनंद ते बन जांदा है, पर सदीवी टिकाऊ नहीं आउंदा। क्यों? मन भटकदा है समय विच, ते समा बहुत वड्डा है भविष्य, समा बहुत वड्डा है भूतकाल। पता नहीं कदों असी चले सी, लंबी यात्रा है, बड़ा लंबा समा। भूतकाल साडा बहुत लंबा है, माजी साडा बहुत लंबा है, ते भविष्य साडा बड़ा लंबा है। पता नहीं कदों तक असी होवांगे, असी अज दे नहीं हां, हिमालय पर्वत तो पहले दे हां, सूरज चंद तारियां तो भी पहले दे हां। ना बोध हेच निशान हाजे जमीनो आसमां, कि शौके यादे तो आवुर्द दर वजूद मरा। हे प्रभु, भाई साहब भाई नंदलाल कहंदे ने अजे जमीन ते आसमान दा ते नामो निशान नहीं सी, मैं ते उदों दा भटक रहा कोई अज दा। ऐसा एक सूफी संत ने भी आख्या है, आदम न बूदो मन बूदम, हवा न बूदो मन बूदम, ई कस न बूदो मन बूदम, मन आशिके देरी नाम। ऐ खुदा को मैं अज दा आशिक हां, अज दी तेरी तलाश कर रहा। अचेतपणे सुचेतपणे कदों दा मैं तेरे रस्ते ते हां, जदों तू अजे मनुख भी नहीं बना आए सन। आदम न बूदो मन बूदम, हवा न बूदो मन बूदम, अजे माया रूपी संसार भी तू नहीं बनाया सी, मैं है सी। ई कस न बूदो मन बूदम, मन आशिके देरी नाम। ए आकार नहीं सी, हे निरंकार, मैं भी निराकार होके विचरदा पिया सी, ते भटकदा पिया सी, मैं ते कदों दा, अज दा थोड़ी है। मन नूं भटकण लई समा चाहिदा है, भूतकाल भविष्य। धर्म कहिंदा है भूतकाल ते भविष्य दियां ही जो है चिंतावां तो इक पासे हो, मन नूं लिया किथे लिया, वर्तमान दिच, वर्तमान दिच। भगवान दी झलक थोड़ी बहुत जद भी मिलेगी वर्तमान दिच मिलेगी, और वही भगवान दी झलक वर्तमान नु भी बिठा के संपूर्ण भगवान हो जाएगी, संपूर्ण परमात्मा हो जाएगी, संपूर्ण ईश्वर हो जाएगी। पर सवाल ही पैदा होता है भविष्य नु और भूतकाल नु किवें मिटाई है, इति हर थां ते पीछा करदा है। मनुख जिथे भी बैठा है बस इतना ही समझ लो, चाहे वह दार्शनिक है, चिंतक है, धनवान है, गुणवान है, मूर्खांत च बैठा है, भविष्य की चिंता च बैठा है, राजा है, भिखारी है, भूतकाल दियां यादां विच बैठा है। क्योंकि मन नूं दौड़न ते भज्जण लई समा चाहिदा है, भूतकाल बहुत लंबा है, भविष्य बहुत लंबा है। तो पहले समझिए वर्तमान किन्ना क है। वर्तमान धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे हम आदमी हां इकदम, मौलत मौत न जाना, वर्तमान इकदम है। वर्तमान अज दा दिन नहीं है, वर्तमान अज दी रात नहीं है, वर्तमान इकदम है जो मेरे मुंह च है, सारिया दे मुंह च है। जिड़ा दम अजे आया नहीं है वो ते मेरा भविष्य है, ते जिड़ा दम चला गया मेरे मुंह चो वो ते भूतकाल है।
جو دم چلا گیا انہوں میں خرچ نہیں کر سکتا، جو دم اجے آیا نہیں میں اسنوں ورت نہیں سکتا، ایک دم۔ تو اتھے پرشن کھڑا ہوندہ ہے، ایک دم دچ کی کر سکتے ہیں؟ ایک دم دچ کوئی لمبی یاترا نہیں ہو سکتی، ایک دم دچ کوئی لمبا چوڑا کاروبار نہیں کھولیا جا سکتا، ایک دم دچ کوئی اچھا وڈا محل نہیں کھڑا کیتا جا سکتا، ایک دم دچ کوئی لمبی چوڑی ودیا نہیں حاصل کیتی جا سکتی۔ پر گرو نانک کہندے نے ایک دم دچ پرماتما پراپت کیتا جا سکتا، جد بھی ملے گا ایک دم دچ، کیونکہ ایک دم نقد ہے تے دھرم دا سودا پرماتما دا سودا نقدی نال ہوندا ہے، نقدی نال ہوندا ہے۔ دنیا دے سارے مہا منتر ایک دم دچ پورے ہو جاندے نے، رام ایک دم دچ پورا ہو گیا، اوم ایک دم دچ پورا ہو گیا، اللہ ایک دم دچ پورا ہو گیا، واہے گرو ایک دم دچ پورا ہو گیا، کروڑ دفعہ واہے گرو واہے گرو آکھن نال ایک پاپ بھی نہیں مٹے گا، کروڑ دفعہ واہے گرو واہے گرو آکھن نال ایک دکھ بھی نہیں مٹے گا، ایک دفعہ واہگرو آکھدیاں کروڑاں پاپ مٹ جان گے، ایک دفعہ واہگرو آکھدیاں کروڑاں دکھ مٹ جان گے۔ یہ تے پھر پہلی ہو گئی، نہیں پہلی نہیں، سارے مہا منتر ایک دم دچ پورے ہو جاندے نے، واہگرو ایک کوئی دم دی لوڑ ہے۔ ہن میرا سا

0: ट्राई सीजिए सब्जी भले खाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जा कॉल किरण @604581-1900।

0: तेजे सब्जी भले खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.

को देना, काम रोग मैं गलवस कीना, दृष्ट रोग पचमुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिशे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी।

0: साहेब वो नांगर कोक देख न सके सिंह सुख दुख आप गुजारे अग्नि नाल असी सियाल च देखे अकल दास कहिंदा है मंत कहिंदा है उह सियाल च रात नूं जे गर्म कपड़े नहीं रजाइयां तलाइयां सब कुछ दे दिंदे आ रात नूं तिन्ने जी अग बाल के सेक के दिने सूरज विच फिर काम कर लग पैंदे कहिंदा जिन्नी देर तक तारू सिंह वर्गे महताब सिंह वर्गे जिउंदे ने ना सिखां ने मरना नहीं उसे वक्त जकरिए खां ने सूबेदार ने आहदीए भेजे आहदीआ हुंदा सी जिहड़ा पालकी विच बह के हुंदा सी एक लफ्ज बड़ा हुंदा आहदीए आहदीए आए ए मुसलमाना दे वेले जिहड़ा राज सी ना एक पिंड चो पालकी चुकनी नंबरदार अगले पिंड च बंदियां दा प्रबंध करदा ही चुकन लई गुलामी सी उत्थे भेज दिते जी फौजी दस्ता आ गया जी पिंड पूले दुपहरे वेले आ गए उधर माई घर माता जी घर लंगर पकारे बीबी तारो लंगर पकारे ए आए ते आके धमकी दे के माई किथे वे तारू सिंह ए लफ्ज ही वरते ओ बागियां नूं रोटी देंदा कहिंदे मां इन्ने मिठे च बोली वे पुत कित्थों आए हो ना पता ते लग गया लिबास तो असी लाहौरों आए हां तुसी बागियां नूं रोटी खवांदे हो मां कहिंदी पोते बागियां ने लई ए गुरु नानक दा लंगर है तुहाडे लई वी ए थके आ ते पहला प्रशादा छक लो दाल फुलका तैयार है प्रशादा छको कहन लगे सी तारू सिंह नूं तेरी भैण नूं गिरफ्तार करना है ओनी देर नूं एक सज्जन कोई हिंदू वीर कहिंदा दौड़िया भाई साहब हल पै बांधदे सन ए पिंड तो बाहर ने भाई साहब दे खेत जिहड़े ने ए पिंड दे न्याई नहीं पूले पिंड तो दूर ने उत्थे भाई साहब हल वाह रहे सन इन जाके दसिया भाई साहब नूं भी फौजी दस्ता आ गया तुहानूं पकड़न आए हा मैं तुहानूं दसण आया भी तुसीं निकल जाओ किसे पासे जां झाड़ च लुक जाओ भाई साहब हलकर छड के कहिंदे आ सिख दा काम कोई नहीं लुकना मैं गुनाह को कीता है मैं कोई पाप नहीं कीता हल पंजाली ओनू दित्ती तू घर नू लै जी जिथे अपने बल्द सन जिथे रख दे तू उधर लै जी आ भाई साहब घर आ गए फौजी दस्ता सी आके फतेह गजाई मुसलमान हिंदू सारे कठे नंबरदार पिंड दा ओनू फौजी दस्ते ने झिड़किया कि नंबरदारा तू जवाब दे गए जे तेन पता सी कि इस पिंड च बागिया नी रोटी पकदी लंगर पकदे दस्या क्यों नहीं नंबरदार ने कहा इत्थे हिंदू भी खांदा इत्थे मुसलमान भी खांदा उन्हां कहा सी बीबी तारो ते तारू सिंह दोनों भैण भरावां नूं गिरफ्तार करना है जिहड़ी सच्चाई हुंदी उह तों मुकरना नहीं चाहीदा हिंदू ते मुसलमान दोनों धिरां सामने आके खलो गईआं उत्थों दे इक बजुर्ग ने कोई नंबरदार कहिंदे आ उहने खलो के कहा दस्ते नूं जिवें बंदा वीर रस चाहुंदा है इस माई नूं हथ ना लायो ये माई तारू सिंह दी मां नहीं सारे पिंड दी मां है कि ना प्यार होवेगा सिख दा इस बीबी भैण तारो नूं गिरफ्तार ना करियो ये कल्ली तारू सिंह दी भैण नहीं मुसलमान कहिंदे नहीं तारू साडी भी भैण है उत्थे कुछ कहिंदे ने फिर इन्हां ने पैसे दे के जी सलीहत है कि बीबी तारो नूं गिरफ्तार नहीं होण दिता भाई तारू सिंह जी नूं गिरफ्तार कर लिया गया जदों तुर लगे सारा पिंड आया सारे बिरा ए भी पता है लाहौर गए ने वापस नहीं आना सिख बंदगी आला जी इतिहास कहिंदा जीवन दा उच्चा जपी ते तपी सिमरन च भिजा कीर्तन करन वाला भाई साहब नूं जदों ले जान लगे नंबरदार ने ही कहा नाल दिया ने कहा एक वारी मां ते भैण नूं मिलता लैन दिओ केवल इमोशनल कर ली नहीं जदों मिले मां नूं मत्था टेकिया कहिंदे मां ने मत्था चुमिया कुट के अपने सीने नाल लाया ते सोहना काला दाड़ा 25 साल दी मेरा ख्याल उम्र थोड़ी उम्र सी जी भाई साहब दी हांजी काला दाड़ा ते उस वक्त दाड़े नूं हाथ च लैके कहिंदी पुत वापस तां नहीं आउणा मैनूं पता है पर आ देखी
1: सुनदे हो जी
2: हां जी
1: दसो जी की पकाइए
2: अपने गवांड वाले फुटी के

वैद रोगियां दा। रोग व्यापक है, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। समस्त संसार रोगी है और हैरानगी है, रोग नु निवृत्त करन दे साधन आदकाल तो मनुखता लभदी रही है। बहुत कुछ लभे है, बहुत कुछ लभे है। आयुर्वेद आचार्या अगे आए, तरह तरह दियां जड़ियां बूटियां लेके। फिर असी देखदे हां होम्योपैथी अगे आई, नेचरपैथी अगे आई, एलोपैथी दा बोलबाला होया। पर इस सब कुछ दे होंदे होया रोगां दा भी बोलबाला है। इतनी जोर नाल ए औषधियां नहीं बोल रही जितनी जोर दे नाल रोगां दी पीड़ा प्रगट हो रही है, रोगां दा रोदन प्रगट हो रहा है। मेडिकल स्टोर दवाइयां नाल भरे पैने, मनुख दी काया रोगां नाल भरी पई है, रोगां नाल भरी पई है। ऐसा नहीं है कि रोग मनुख नु चमड़े ने, मनुख ही एक रोग है, मनुख ही एक समस्या है। अगर मनुख एक रोग है तो गुरबाणी इसका विभाजन कर दिए दो हिस्सों में, तन रोग है, मन रोग है। तन विच ये जो रोग है अनंत बीमारियां ने, मन विच जो रोग है अनंत चिंतावां ने, अनंत चिंतावां ते सोग। इंज कह लो, तन विच रोग मन विच सोग, अनंत चिंतावां दा जो समूह है वह है सोग, ते अनंत बीमारियां दा जो इकट्ठ है ओ रोग। ये चलदा फिरदा मनुख इंज अंदाजा ला लो, रोग चल रहा है सोग चल रहा है। दो मनुख किधरे मिलन रोगां दा मिलाप होया है, सोगां दा मिलाप होया। और गुफ्तगू दे रोग ही प्रगट होणगे, अपनी अपनी समस्यावां ही प्रगट होणगियां। एक दूजे ने अपना सोग दसना है, एक दूसरे ने अपना रोग दसना है। तो ये तक सच्चाई हो गई, रोग ही रोग नाल मिले है, सोग ही सोग नाल मिले है। देखण नूं तां इंज दिखाई देगा मित्र मित्र नाल मिले है, पर गुरबाणी दी रोशनी च देखो नहीं, रोग दा ही रोग नाल मिलन होया है। देखण नूं तां इंज पति ते पति दा मिलन होया है, पर कौन दसे एक चिंता दूसरी चिंता नाल जा मिली है। एक रोग दूसरे रोग दे बगल गिर होया। कहिंदे ने हस्पताल दे अंदर दाखल मरीज मरीजां दी मरीजां नाल दोस्ती हो जांदी है, रोगियां दी रोगियां नाल दोस्ती हो जांदी है, जेल दे अंदर कैदियां दी कैदियां नाल दोस्ती हो जांदी है। स्वतंत्र बंदियां नाल दोस्ती कर सकन ऐसा माहौल ही उपलब्ध नहीं है, ऐसा माहौल ही उन्हां दे सामने नहीं है। तो कैदियां दी दोस्ती कैदियां नाल हो जांदी है, रोगियां दी दोस्ती रोगियां दे नाल हो जांदी है। ते जे मनुख दी खास अंतिशकरण विच जात मार के देखिए, रोगां दे भंडार तो बिना होर है कि एक रोग ही दूसरे रोग नु मिल रहा है, एक चिंता ही दूसरी चिंता नु मिल रही है। कोई पुत्र ते पिता दा मिलाप नहीं, दो समस्यावां दा मिलाप हो रहा है। प्यो ने अपनियां समस्यावां रख दित्तियां ने, पुत्र ने अपनियां समस्यावां रख दित्तियां। कोई भैण भरा दा मिलन नहीं है, भैण ने अपनियां समस्यावां रख दित्तियां ने, भरा ने अपनियां समस्यावां रख दित्तियां ने। अगर गहराई च देखो कोई पति ते पत्नी दा मिलन नहीं, एक दूजे दे रोगां दा मिलन हो रहा है, एक दूजे दियां समस्यावां दा मिलन हो रहा है। और कितनी ए बदकिस्मत दुनिया है कि दो रोगां दे मिलाप दे खुशी जाहिर की जाए, दो चिंतावां दे मिलाप नूं मिलनी आख्या जाए, दो मुसीबतां दे दो कल कलेश दे मिलाप नूं खुशी दा अखाड़ा बनाया जाए।
ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੋਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਣ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੀਮਤੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਉਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ਤਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਨੇ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਰੋਗ ਦਾ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੁਧ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਸਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਜੋ ਹੈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਅਖਾੜੇ, ਖੇੜੇ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਸੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗੀਤਾ ਦਾ ਚਿਰਾਗ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮਾ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੀਪ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਚਾਨਣ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੁਝ ਚੁਕੇ ਚਿਰਾਗ ਦਹਿਰੋ ਹਰਮ, ਦਿਲ ਜਲਾਓ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਮ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਹਿਰੋ ਹਰਮ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਧਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਧੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੀਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੀਵਾ, ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਵੀ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਗਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਅਖਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੰਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੁਝ ਚੁੱਕੇ ਚਿਰਾਗ ਦਹਿਰੋ ਹਰਮ, ਦਿਲ ਜਲਾਓ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ, ਬੜੇ ਆਲਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ, ਔਰ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੀਪਕ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਤੇ ਦੀਪਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਦੀਪਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ, ਹੈ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਰਹਾਉ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ, ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਠਹਿਰਾਉ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਅਨਵਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਾਲਵਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਅਨਵਾਨ ਨੇ, ਦੋ ਦੋ ਰਹਾਉ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਰਹਾਉ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ, ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਪਕ ਪਰ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇ ਦੀਵਾ ਵੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਰਹਾਉ,
ए तेल दीवा तो जले कर चानन साहिब तो मिले। ए तेल है ए वट है और तू इस तरह चानन कर। हजारा पदार्थ जो पे ने घर विच बेशुमार चीजा जो पईया ने सब दिखाई देन लग पैंदियां ने। दीवा बुझे होया हजारा च एक भी नहीं दिखाई देंदी। इस वास्ते एक सच्चाई है अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा नहीं है बहुत वड्डा पर्दा है। उच्चे उच्चे पहाड़ अंधेरा ढक देंदा है नहीं दिखाई देंदे। वनस्पति बड़े बड़े जंगल बाग बगीचे सबनों अंधेरा ढक देंदा है। उचिया उचिया बिल्डिंगा ए महल ए मुनारे अंधेरा सबनों ढक देंदा है। अंधेरे च शहर नहीं दिखाई देंदा अंधेरे च जंगल नहीं दिखाई देंदे अंधेरे च बाग बगीचे नहीं दिखाई देंदे अंधेरे विच ओ पहाड़ नहीं दिखाई देंदे जिन्हां दियां चोटियां आसमान नूं बोसा दे रही हैं नहीं दिखाई देंदे। अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा नहीं है कोई पर्दा नहीं है और रोशनी तो वड्डी कोई बेपर्दगी नहीं है। प्रकाश सब कुछ नूं मनजर आम दे कर देंदा है। ए पहाड़ ने ए शहर ने ए वनस्पति है ए बाग है ए जंगल ने ए मनुख ने। अंधेरा हो जाए और एक घर विच कोई 50-60 फर्द बैठे होन हुण अंधेरे च नहीं दिखाई देगी भैण कौन है ते पत्नी कौन है मां कौन है ते पिता कौन है। अंधेरा ऐसा है दूजे नूं बर्दाश्त ही नहीं करदा अंधेरे च अंधेरा ही दिखाई देंदा है और कुछ भी नहीं दिखाई देंदा। जद अंधेरा आउंदा है अंधकार दूसरे दी होंद नूं बर्दाश्त ही नहीं करदा। अंधेरा कहिंदा बस मैं अंधेरे दे सामने हजारां चीजां छुप के रह गईआं। सब तो भयंकर रोग है अंधकार और अंधकार है अहंकार। अहंकार दे सामने ते निरंकार भी ओले हो जांदा है नहीं दिखाई देंदा नहीं दिखाई देंदा। बड़ा प्रबल अंधकार। भारत ने बहुत प्राचीन काल तो महसूस किया है मनुख की जिंदगी विच इक्को ही त्योहार हो सकता है और नहीं बाकी सब वक्ती ने। इक्को ही त्योहार महान है केड़ा दिवाली दिवाली चानना रोशनी। और मनुख की जिंदगी विच इक्को ही बदकिस्मती है कि अमावस मस्या अंधेरा। दिवाली मस्या दी रात नूं आउंदी है। पूर्णमासी दा चंद्रमा खिड़िया होया दीवे जलाउण दी लोड़ ही की है। दीवियां दी महानता अमावस दी रात जो है बनदी है। मनुख अमावस है अमावस सज सकदी है अमावस भी शिंगारमयी हो सकदी है अमावस भी दुल्हन बन सकदी है बशर्ते प्रकाश दा राजा आ जाए प्रकाश दा दुल्हा आ जाए तो ए अमावस भी शिंगारमयी हो सकती है प्रकाशमयी हो सकती है सजी हुई दुल्हन हो सकती है। बार ते मनुख ने ऐसा यतन कीता है अमावस नूं हजारां दीवे जला के रोशनी करन विच ए सफल हो गया सब तो वड्डा त्योहार हो गया दिवाली। पर जीवन जो स्वयं मसिया दे च है जमया मसिया दे च जीविया मसिया दे च मरिया भी मसिया दे च। पता नहीं कितनियां दिवालियां भी मनुख व्यर्थ कर चुके हैं कुछ नहीं प्रेरणा ली कुछ भी नहीं प्रेरणा ली। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने ऐ मनुख है ते तू दीवा पर करिए कि बुझे आया बुझे होया है कि बुझे होया क्यों है। इतने जल्दे दीवे ने कृष्ण दा दीपक एक दीपक दा नां कृष्ण एक दीपक दा नां राम एक दीपक दा नां गुरु नानक एक दीपक दा नां मोहम्मद साहब एक दीपक दा नां ईसा
एक दीपक महात्मा बुद्ध, एक दीपक दीपक ने स्वामी महावीर, पता नहीं कितने दीपक कितने दीपक। और एक आम कहावत है कि दीवे नाल दीवा जलाया जा सकता है, जलाया जा सकता है, जलदा या दीपक ही बुझे दीपक नु जलंदा है। पर जलदे दीवे सारे नाकारा साबित हो जाते ने जब दीवे च तेल ही ना होवे ते वट ना होवे की करनगे। जलांदे रहने ना बुझे हुए दीवियां नू ए अवतारी पुरुष, उना दी रोशनी इना नू रोशन नहीं कर सकी क्योंकि दीवियां च तेल नहीं सी, वट नहीं सी। हर अवतार किसे हद तक नाकाम होके जगत तो गया है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते ने, धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपाड़न। मनुख दे अंदर जड़ी दुष्टपना बिरतियां ने इना सारियां दी मैं जड़ा पुटनियां ने, सारा अंधकार नाश करना। कवि तुलसी भी कहने ने, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभमाने, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा अरे कृपा निद सज्जन पीरा। जद जद अधर्म दी हानि आउंदी है, कोई महान धर्म दा दीपक आ जांदा है इना बुझे होया दीवियां नू जलाण वास्ते, पर धर्म दी हानि ते हो रही है और रोज रोज ए हान वद्दा जा रहे, लाभ ते कोई नहीं नहीं है। ठीक है तुलसी दी शरदा, ऐसा दसम ग्रंथ दे च भी है, जब जब होए अरिष्ट अपारा तब तब देहे धरत अवतारा, जद घोर मसिया दी रात हो जाए आउंदे ने अवतार। पूर्णमासी दा चंद्रमा बन के आउंदे ने, पर कीता की जाए जिंदगी दी अमावस जिस नाल मनुख सहमत हो गया, अंधेरे दे जीवना जिसले ही जन्मदिन बन जाए, अंधेरे लई जीवना जिसले ही नचना ते टपना बन जाए, ऐसा बुझिया होया दीवा फिर फिक्र नहीं कर सकदा मेरे विच तेल नहीं है वट नहीं है। ऐसे दीवियां ने कई दफा इना जलदे दीवियां ते इल्जाम लाया है। मैं देख के हैरान हां, एक दीवे नू ते कह दिता कि घर देच क्यों जल रहा है, ये 14 साल बनवास निकले जंगल देच। एक दीवा ते जेल दी तंग तारीख कोठड़ी देच जलेया, श्री कृष्ण दा जन्म जेल दी तंग तारीख कोठड़ी देच होया। एक जलदे चिराग नू बाबर ने अपनी जेल दे छपा दिता, एक जलदे हुए दीवे नू प्रकाशमयी दीपक नू वकत दी हकूमत ने तत्ती तवी ते बिठा दिता, एक जलदे हुए चिराग नू चांदनी चौंक दे फूका मार के बुझाण दी कोशिश कीती गई। बुझाओ बुझाओ, पर कौन दसे ए दीवे ओ ने, ए दीपक ओ ने जिस दे च तेल स्वयं परमात्मा बने आया है, जिस दे च वट स्वयं ईश्वर बने आया है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो किस तरह बुझेगी, वो किवें बुझेगा, लेकिन इतना ते कहा जा सकता है वो किवें जल सकेगा जिथे तेल नहीं है वट नहीं है। जलदा होया दीपक ते नहीं बुझेगा, पर बुझे होया दीपक नहीं जल सकेगा अगर तेल नहीं है वट नहीं है, तो तेल की हो सकता है, वो वट की है बाती की है। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज पावन पवित्र वाक विच इन फरमान करदे ने, पोथी पुराण कमाइए भव वट्टी इत तन लाइए, सच बूझण आण जलाइए, ए तेल दीवा इउं जले कर चानण साहिब तौ मिले। जितने जगत दे धार्मिक ग्रंथ ने गल मन ले, ए मुसलमान कुरान दी गल मन ले, घर विच कुरान है पर मुसलमान कुरान तो बिना जी रहे। घर घर विच गीता दियां पोथियां हो सकदियां ने,
गीता का पाठ हो सकता है पर हिंदू गीता तो बिना जी रहे है। गुरबाणी होंदे होया सिख गुरबाणी तो बिना जी रहा है। इसका व्यवहार दसदा है, इसका आचार दसदा है। इसके व्यवहार दते गुरबाणी की मोर नहीं है, इसके आचार दते गुरबाणी तस्दीक नहीं करते। इतना ईसाई जगत पर बाइबल तो बिना जी रहा है। इतना महान ये बोध जगत पर धम पदो बिना जी रहा है। ये जैन महावीर दे समय सार तो बिना जी रहे हैं। इतने चिराग ये रोशनी तो बिना क्यों जी रहे हैं? वट नहीं है, तेल नहीं है। धर्म ग्रंथ जो कहंदे ने इन्हां नूं मन्ना मन्ना, एक एक अखर नूं खिड़े मथे मन लेना। मन्नेगा मनुख ताई जे कम से कम इतना ओ समझे कि मैथों ए अग्गे, मैथों ए अग्गे। अगर कृष्ण मेरे तो पिछे खड़े ने तो मैनू उन्हां दी कोई गल सुनन दी लोड़ नहीं, उन्हां तो ते मैं ही अग्गे खड़ा। जे गुरु नानक मैथों पिछे ही ने, मेरे अग्गे नहीं ने, तो मैं क्यों उन्हां दी गल मना, क्यों उन्हां दी गल मना। मैं देखदा हां मनुख ने राजनैतिकां नूं भी अग्गे रखिया, उन्हां दी गल भी मन लैंदे ने। मनुख ने परिवार नूं भी अग्गे रखिया, पत्नी दी गल भी मन लैंदे ने, और पत्नी पति दी गल मन लैंदी है, भरा भरा दी गल मन लैंदा है। इंज कह लो मनुख ने परिवार अग्गे रखिया होया, राजनैतिक लोगां नूं भी अग्गे रखिया होया। मनुख दी जीवन भर दी चेष्टा ते यही है, हर अवतार नूं अपने पिछे ही खड़ा करो। जिस जिस पासे असी चल रहे हैं उस पासे चलन, जबकि अवतार कह देने जिस पासे असी चल रहे हैं उधर चलो। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। अगर अवतार मनुख दे पिछे चलन लग पे तो फिर अवतार अवतार नहीं है। अगर मनुख मनुख दे पिछे चलन लग पे तो मनुख मनुख नहीं है, तो देवता है, ये तो फरिश्ता है, ये तो महान हो गया। देखन देखन दे चाया है, पत्नी पति दे पिछे चल सकता है, पति पत्नी दे पिछे चल सकती है, भरा भरा दे पिछे चल सकता है, संसार राजनैतिक दे पिछे चल सकता है, मनुख अवतार दे पिछे नहीं चल सकता। जबकि अवतारां दी कोशिश है साड़ी आवाज दी सेध, चले आओ चले आओ, पहुंच जाओगे घर तक। तो साहब कहंदे ने धर्म ग्रंथां नूं मन लेना, ते मन के उन्हां नूं हिरदे विच धारण करके उन्हां दा पाठ पठन रोजमर्रा करना, ए तेल पाना है दीवे विच। भव वट्टी इत तन लाईए, भावना दी वट प्यार दी बाती ला। जिसनूं रोज रोज याद करिए पाठ दे राही बाणी दे राही, आखिर याद एक दिन ते प्यार बनेंगे बनेंगे। याद ही प्यार बनती है। इस दिते मैं उदाहरण देना हुना, जैसे खादा होया भोजन एक दिन खून बनता है, बार बार कीती हुई याद एक दिन प्यार बन जाती है, प्यार बन जाती है। रोज रोज दा पाठ, रोज रोज दी ये धर्म ग्रंथां दी कमाई एक दिन प्यार बन जाती है। तो पाठ करना धर्म ग्रंथां दी इस रचना नूं, इस बाणी नूं मनना ते जप करना, ये तेल पाना है। पढ़ना ते जपण विच थोड़ा जिहा अंतर है। मैं पढ़ना है इस वास्ते मैनूं याद होवे, मैं पढ़ना है इस वास्ते कि मैनूं इस दे अर्थ बोध आ जान, मैं पढ़ना है इस वास्ते कि मैनूं पता चल जाए किस अवतार किस भगत दा ये बोल है, पर मैं जपना है इस वास्ते जपना है कि मैं शब्द दा रूप हो जावां, इस बाणी दा रूप हो जावां। जपन लगया बाणी दा वाक दा कंठ होना बड़ा

0: प्राइस दीजिए सब्जी फल खाना है,
1: फ्रूटी क्या नहीं जाना है,
0: फ्रूटी क्या नहीं जाना है,
2: फ्रूटी क्या नहीं जाना।
3: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह, पंजाब दे विच जे रुपये पहुंचने करने ने, जे रुपये बाफर हो गए ता डॉलर इत्थे पहुंचने करने ता गगन सिंह 604-349-1313 24 घंटे दे विच पंजाब रुपये पहुंचणगे ते 24 घंटियां दे विच डॉलर इत्थे ले लियो 604-349-1313 यूनिट 103-8840-120 स्ट्रीट सरी 604-349-1313 604-349-1313 गगन सिंह पंजाब फॉरेक्स दावा ते वादा पक्का।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.

0: ਉਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਇੰਨੇ ਤਾਜ਼ੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ
1: ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਖਾਣਾ ਏ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਏ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਏ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ
2: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगदा सी, पर जदों मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा, ओदों तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नूं है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन, बुक कीपिंग होवे या किसी भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे, तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नूं। कॉल 604-325-8370 604-325-8370
3: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.

0: प्राइस दीजिए सब्जी भले खाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।

0: सी भले खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही
1: जाना। जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगदा सी, पर जदों मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा, ओदो तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नूं है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन, बुक कीपिंग होवे या किसी भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे, तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नूं। कॉल 604-325-8370 604-325-8370।
2: तुहाडा घर, तुहाडी सब तो वड्डी इन्वेस्टमेंट, तुहाडा सब तो वड्डा एसेट हुंदा है।
3: इसनु खरीदन जा वेचन ले तुहानु चाहिदा है एक अजेहा रियल्टर जो तुहाडे लिए काम करे, जिस ते तुसी भरोसा कर सको, जो तजर्बेकार होवे। अजेहे ही एक रियल्टर हन गुरदयाल सिंह बाद, जो अपने 35 सालां तो वधे तजर्बे नाल रीमैक्स दे टॉप प्रोड्यूसिंग रियल्टर्स विच शामिल हन।
2: मार्केट दी पूरी समझ अते तुहाडे भरोसे ते पूरे उतरणगे गुरदयाल सिंह बाद।
3: तो हर तरह दी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फॉर्म अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी संबंधी सही सलाह ले अज ही गुरदयाल सिंह बाद नु
2: 604-351-5111 ते कॉल करो। 604-351-5111 गुरदयाल सिंह बाद।